0: आज के सुविचार।
1: मन, बड़ी ही विचित्र कृति है ये मन। शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी वनों उपवनों की इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष। तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। राधे राधे।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा।

0: ભાઈ બનો ગીત તો આઈશું પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું સ્વાગત કરો હો અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ગીત કે પહેલે મેં આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે આપણે જે જંગલ હે એ ખતમ થવા લાગી ગયા હે એને સાથે આપણે નદી હુકાઈ ગઈ હે ને અગર આપણે હવે બી નહીં હમરે તો આપણી જે વિરાસત હે એ ભી નહીં વસેગા તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહે હૈ પટેલજી તો સૌથી પહેલા આપણે હમરી લેણાની વાત અને મોરે કરા આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કી આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈ ઓર ખેતી સે જુડી વિશેષ જાણકારી આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો દેતે હૈ આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં હમારે શ્રોતા સાથીઓ સે બાતચીત કા વિષય જોડને જા રહા હૈ કે જંગલ ભી હમારે ચલે ગયે હમારી નદિયા ભી હમ દેખ રહે હૈ કે બહોત સે બાર સૂકને કી કગાર પર આ જાતી હૈ તો એસે મેં યે ભી એક સમય હૈ હમારે લિયે કે હમ હમારી ચીજો કો બદલે હમ હમારે જીવન મેં સુધાર કરે અગર હમને અભી ભી ઇન સારી ચીજો કો અનદેખા કર દિયા તો એક દિન એસા આયેગા કે હમારી વિરાસત ભી હમારે પાસ નહીં બચેગી સબસે પહેલે હમ યહી બતાઈએ કે જંગલ નદી કિસ તરીકે સે હમારી વિરાસત હૈ વિરાસત ક્યા હૈ ઓર ઇસકા હમારે જીવન મેં ક્યા મહત્વ હૈ
1: બિલકુલ વાગડ ક્ષેત્ર કી બાત કરે તો હમારી વિરાસત ક્યા હૈ જો જંગલ હૈ જમીન હૈ પેડ પૌધે હૈ ये सब हमारी विरासत है
0: बिल्कुल
1: अपन जानते हैं कि जैसे जुलाई महीना आ जाता है पूरा वागड़ जैसे फिर से जी उठता है ऐसा अपन को लगता है सूखी पहाड़ियां हरी चादर ओढ़ लेती है ना खेतों में हलचल मचने लगती है महिलाएं धान की रोपाई करती है मक्की की बुआई करती है और जैसे बच्चे भी बारिश में भीगते हुए कीचड़ में खेल कूद करते हुए ये जो नजारा होता है वो नजारा वास्तव में एक बहुत आनंद रूप हो जाता है ये जो नजारा देखते ही अपन को महीने से जो सूखी धरती की जो पहली बारिश के बाद ऐसी महकती है कि हर किसान उस चेहरे की उम्मीद की मुस्कान आ जाती है अपन को पहली बारिश में पता चलता है ये जो मिट्टी की जो महक है ना ये बहुत आनंद दिलाती है लेकिन जो विरासत है खास करके हरियाली की विरासत है पौधों की विरासत है पहाड़ियों की विरासत है जैसे पहाड़ियों में अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं खिल उठते हैं सागवान की बात करें साल की बात करें बांस की बात करें महुआ खेर पलास जैसे पेड़ पौधे लहराते हैं
0: बिल्कुल
1: तो ये हमारी विरासत है केवल ये पत्थर और झाड़ियां जब अभी अपन देखते हैं है ना तो और जब जिस पहाड़ के ऊपर कोई पेड़ पौधा नहीं है वहां सिर्फ सफेद पत्थर ही चमकता है
0: बिल्कुल
1: तो हमारी विरासत खत्म हो जाती है तो इसी को अपन विरासत बोलते हैं कि जहाँ नदियां हैं झरने हैं और पेड़ पौधे हैं पहाड़ है ये विरासत बचाए रखना बहुत जरूरी
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो विरासत है वो हमारे मन को सुकून देती है और वहीं अगर हमारी जो ये पेड़ पौधे हैं जो लहलहाते हुए हमारे पशु पक्षी हैं ये हमें नहीं दिखेंगे हमारी जो परंपरागत चीजें हैं वो हमें नहीं दिखेंगी तो हम देखेंगे कि हमारी जो विरासत है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी तो जिस तरीके से हमने जंगलों को खोया है नदियों को खोया है उस तरीके से हमें हमारी विरासत को नहीं खोना है अब यही बात आती है कि हमारे जंगल और नदी का क्या रिश्ता है
1: बिल्कुल अपन ने अपनी विरासत की बात करी और जंगल और जो नदी की अपन बात करें तो बच्चा जैसे पूछता है कभी कभी कि मम्मी मम्मी ये नदी कहाँ से आती है
0: जी हाँ
1: तो अपन बोलते हैं कि भी नदी तो पहाड़ों से आती है ये वास्तव में ये सही बात है लेकिन पूरी बात सही नहीं है सच ये है कि नदी जंगल की गोद से जन्म लेती है क्योंकि जंगल है तो वहां पानी है जो जंगल है वही ये जो नदी का मतलब ये जन्मदाता जिसको बोलते हैं ना जैसे माँ पालन पोषण करती है वैसे ही जंगल नदी को जन्म देती है यदि जंगल नहीं रहा तो नदियां खत्म हो जाती है जहाँ पेड़ पौधे हैं वहां ही पानी है और जहाँ पानी है वहां से ही नदियां चालू हो जाती है जो तेज बारिश होती है और घने जंगल होते हैं और उस घने जंगल के अंदर जब बारिश भले कितनी भी तेज हो लेकिन उसके ऊपर जब पानी गिरता है तो पहले पत्तों के ऊपर गिरता है फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो नीचे जमीन पर आता है और महीनों तक वो पानी जमीन में उतरता है और नदी छोटे छोटे नालों में बह के फिर आ जाता है
0: बिल्कुल
1: और लेकिन जहां नंगे पहाड़ है वहां बारिश यदि बहुत आ गई तेज बारिश आ गई तो वहां खाद मिट्टी पोषक तत्व सब बह के चला जाता है
0: जी जी
1: तो धरती के अंदर बहुत कुछ है इसको बचाए रखना अपना कर्तव्य है और उसको नंगा पहाड़ नहीं बनाना है, जहाँ बताया गया है ना कि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहीं ही पानी आ जाता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने जंगल और नदी का रिश्ता हमें बताया है, वही अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे जीवन में ये जो जंगल और नदी है उनका हमारे जीवन, खेती और संस्कृति पर क्या असर पड़ता है।
1: महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब जंगल नहीं रहा तो खेती और अपनी संस्कृति पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। आदिवासी का जीवन डोर जो है, जो जंगल, नदी, पहाड़, मिट्टी, पशुधन, बीज जैसी चीजों से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: और इनमें से ये जो कड़ी, कोई भी एक कड़ी कमजोर हो जाती है इसमें से, तो उसका असर पूरा उनके जीवन पर पड़ता है।
0: जी हाँ।
1: और ये केवल पर्यावरण का नहीं, जीवन और संस्कृति जो है वो भविष्य का संकट बन जाता है। तो इसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। खेती पर तो साफ असर दिखाई देता है। किसान बताते हैं कभी कभी कि पहले जैसी बारिश क्यों नहीं आ रही है ना। तो बारिश जैसे कभी तेज बारिश आ जाती है तो मिट्टी वहां से ले जाती है।
0: जी जी।
1: कभी हब तो अभी अपन देखते हैं, अभी की बात करते हैं तो काफी बारिश ने बहुत लंबा समय ले लिया।
0: जी जी।
1: अपनी फसल सूखने की ओर आ रही थी तो यदि अभी 5-7 दिन बारिश नहीं आ जाती तो फसल पूरे पूरी सूख जाती।
0: जी हाँ।
1: तो किसान भी यही कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो बहुत बारिश आती थी, 120 दिन बारिश आती थी और बारिश मतलब धान पूरे पूरा अच्छा हो जाता था, फसलें बहुत लहलहाते रही थी, और अभी अभी अपन देख रहे हैं कि जब फसल सूखने की तैयारी होती है इतना लंबा समय के बाद बारिश आती है।
0: जी हाँ।
1: तो जब बारिश नहीं होती धान, मक्का, उड़द, तिल जैसी फसलें बीच में सूखने लगती है, दोबारा बुआई करनी पड़ती है, बीज, मेहनत और समय तीनों का नुकसान हो जाता है।
0: जी जी।
1: जंगल ही खेतों के लिए खाद का बड़ा स्रोत भी है। यदि जंगल नहीं रहा तो खाद कहाँ से आएगा, क्योंकि जंगल में पेड़ पौधे हैं, पत्तियां गिरती है, पत्तियों में से जो खाद बनता है वो धीरे धीरे पानी के साथ बह के नालों में से वहां से खाद बन के तैयार होता है और वहां खेतों के अंदर आता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो पशुओं का गोबर है वो उर्वरक बनाता है। जंगल घटने से प्राकृतिक चक्र धीरे धीरे कमजोर हो जाता है।
0: जी हाँ।
1: तो प्रकृति को बचाए रखना जरूरी है। प्राकृतिक बचेगी तो अपनी संस्कृति बचेगी। तो ये सब चीज जैसे मैंने बताया थी, हर चीज को जुड़ती कड़ी है। यदि ये कड़ी कहीं ना कहीं खत्म हो गई तो आदिवासी का जीवन संकट में कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही बात आती है कि इन सारी चीजों का हमारे समुदाय स्तर पर समाधान कैसे देखा जा सकता है।
1: समुदाय के लेवल पर जो अपन समाधान की बात करें तो समुदाय को ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करना चाहिए। जंगल को काटना नहीं चाहिए। जंगल में क्या काटने की जरूरत है, जंगल में जो सूखी टहनी है, यदि जलाऊ लकड़ी काटते हो तो सूखी टहनी है ये चीज काटनी चाहिए। यदि आप कुवाड़ा लेके पूरे पेड़ पौधे को काट दोगे तो जंगल खत्म हो जाएगा, और जंगल खत्म हो जाएगा तो बारिश, आप जानते हो कहीं कहीं वैज्ञानिक भी वही कह रहे हैं कि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ बारिश है, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पानी संग्रह हो सकता है। तो पेड़ पौधे बचा के रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: पेड़ पौधों के साथ साथ जो अपने समुदाय है उसको, ये जो अपन बात करते हैं ना कि भी रासायनिक की बात करते हैं, पेस्टिसाइड की बात करते हैं, इस तरह का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए।
0: जी जी।
1: और इस तरह का प्रयोग करने से अपने जलवायु पर असर होती है, तो इसका भी अपन को ध्यान रखना चाहिए कि जितना कम प्रयोग करेंगे इतनी प्रकृति जो अपना है वो सही रहेगी, और प्रकृति सही रहेगी तो बारिश अच्छी आएगी, और बारिश अच्छी आएगी तो जंगल हरा भरा रहेगा, और जंगल हरा भरा रहेगा तो किसान की खुशहाली बनी रहेगी।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये बताया है कि विरासत क्या है, इसका क्या महत्व है, और किस तरीके से जंगल और नदी का रिश्ता है, और इनका हमारी खेती और संस्कृति पर क्या असर पड़ता है, और समुदाय साथ ही क्या क्या समाधान के तौर पर चीजों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को।
1: मैं श्रोता साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो जंगल बचाने की अपन बात कर रहे हैं, जो समय पर बारिश की आवश्यकता यदि लानी है और फसल को अच्छी तरह से अपन को लेना है, फसल वापस पहले जैसा ही समय लाना है, तो अपन को जरूर हर बारिश के मौसम पे अभी हर समुदाय यदि 5-5 पौधे लगाएंगे तो काफी पौधों की संख्या हो जाएगी, और जहाँ पौधे हैं वहाँ पानी है, पानी को बचा के रखना बहुत जरूरी है। पानी बचेगा तो जीवन सुधरेगा, फसल बचेगी। तो ये चीज करेंगे तो श्रोता साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि अभी हर व्यक्ति पौधे लगाने का प्रयास करें और पौधे बचाने का प्रयास करें, काटने का नहीं बचाने का प्रयास करें, तभी जीवन सुखदायी बनेगा।
0: जी बिल्कुल सर, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: માઇન્ડ બુનો સિમકે વડે આપણે વેસમે પાંચા ભાઈ પટેલ સાહેબ જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તે કી ઘણા કની વાતે વતાડી હે એણે આપણને વતાડ્યું હે કે વિરાસત હું કહેવાય આનું હું મહત્વ હે ને હરતે જંગલ ની નદી નું એક બીજા તક કી રિશ્તો હે ને એની સાથે આ જે જંગલ ની નદી હે ઈ અગર ને હોંગા તો આનું અસર આપણે જીવન ખેતી ને સંસ્કૃતિ માટે હરતે પડે હે ને સમુદાય અન મે હરતે સમાધાન ની તોર માટે ઘણા કની મોટી ભૂમિકા નિભાવી શકે। तो आशा करो हो कि आ हंगरी वाते आपने गमी होंगा, क्योंकि अभी टाइम थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक की सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा, पर जाते पहले हमरी लायक और कितने मोरे पड़ा सूटा।

ग्राइंडबोनो अणस के थाते कार्यक्रम खेती बाड़ी तकी अमे पड़ा सूट। आशा कर रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में हमारी आप तक जी भी बातें रही हैं या आपने गमी होंगे। तो आपने अमारो आज नो कार्यक्रम केव लगे एने बारे में आप अपना राय सुझाव अमने आली सको अमारे अणपत्ता माते। अमारो पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 327001। हजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाई बोनो फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक ना विषय ने हाते तारुती राम राम राम राम।

0: वाली माटी में जाऊं हूँ और माटी तक किस जाना जाऊं हूँ। मैं खेत हमारा बीज बोया वो पसंद बहाई वो विश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जमा आते मारो अधिकार किन्नती सूरी जन्म तक किस हकदार है कानून ने आ बात मानी है ना पन्या पोते तेरे हक को ले सके ना रिवाज और सच में बदली सके बाप दादा ने जमी सूर्य अधिकार सूर्य नो हक इन्हें पहचान
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
2: जागृति बुन आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
3: नाना अंजलि बुन हूँ था का
2: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा खेतर मंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
3: ओ अंजलि बुन इटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
2: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
3: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
2: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोता साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन में जब भी हम हाजिर होते हैं तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ता है। और आज हमारे कार्यक्रम में एक ऐसा ही विषय जुड़ने जा रहा है जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कशिश के जिसे कई परिवार सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अक्सर माता पिता कहते हैं कशिश कि बच्चा पहले की तरह खेलता नहीं है, थोड़ा सा चलने पर थक जाता है, हर समय सुस्त रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और हमेशा लेटे रहने का मन करता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो इसे केवल आलस्य समझना सही नहीं बल्कि कई बार यह शारीरिक संकेत भी हो सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि कई बच्चों को अधिक देखभाल और किसी कारण की वजह से जांच की आवश्यकता होती है। बचपन ऊर्जा उत्साह और नई चीजें सीखने का समय होता है। देखते हैं कशिश के इस समय बच्चा जो है वो सामान्य रूप से खेलना दौड़ना सीखना नई गतिविधियों में भाग लेना पसंद करता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि कोई बच्चा लगातार थका हुआ दिखाई दे तो इसके पीछे शारीरिक मानसिक या जीवन शैली से जुड़े कई कारण हो सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसलिए केवल लक्षण नहीं बल्कि उसके पीछे के कारण को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे अभिभावकों और श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों में बार बार थकान क्यों होती है, इसके क्या कारण है और समाधान माता पिता क्या अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी, बचपन जो है वो ऊर्जा, उत्साह और नई चीजें सीखने का समय होता है। इस दौर में सामान्य रूप से बच्चे खेलना, दौड़ना, सीखना, नई नई गतिविधियों में भाग लेना पसंद करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वर्तमान की जीवन शैली के कारण कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जल्दी थक जाते हैं, जिसके कारण माता पिता चिंतित रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बताएं तो इन सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक भोजन की कमी।
1: बिल्कुल,
0: यदि अंजलि जी, बच्चे के भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, आयरन, विटामिन और कुछ जरूरी पोषक तत्व नहीं होते हैं तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती है। कई बच्चे केवल पेट भरने वाला भोजन तो खा लेते हैं लेकिन वह शरीर को ताकत देने वाला संतुलित आहार नहीं लेते।
1: जी जी,
0: बार बार जंक फूड, पैकेट वाले स्नैक्स, मीठे पेय पदार्थ खाने से पेट तो भर जाता है साथियों बच्चों का, लेकिन शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में बच्चों में ढेर सारी समस्याएं देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, यही अब बात आती है आयरन की कमी की। श्रोता साथियों, आयरन की कमी भी बच्चों में थकान का एक प्रमुख कारण है। आयरन की कमी होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, जिससे शरीर के अलग अलग अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे बच्चों का चेहरा फीका दिख जाता है और वे जल्दी थक जाते हैं और पढ़ाई और खेल में पहले जैसा उत्साह नहीं दिखता। इसलिए यदि लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रहे तो तुरंत डॉक्टर से

0: सलाह लेकर जांच करवाना उचित होता है।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि पर्याप्त नींद न लेना भी बच्चों की थकान का बहुत बड़ा कारण है। आजकल कई बच्चे कशिश देर रात तक मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते हैं और देर से सोते हैं। सुबह जल्दी स्कूल जाने के कारण उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती।
1: बिल्कुल।
0: अधूरी नींद शरीर और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करती है, इससे बच्चा दिन भर सुस्त, चिड़चिड़ा और कम सक्रिय रहता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं हम पानी कम पीने की, क्योंकि हम देखते हैं कि पानी कम पीना भी अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाला एक कारण है।
0: बिल्कुल।
1: शरीर में अंजलि जी पानी की कमी होने पर थकान, सिर दर्द और कमजोरी बच्चों को महसूस हो सकती है। विशेषकर ये समस्या दोस्तों गर्मियों में होती है, क्योंकि गर्मियों में बच्चों को समय समय पर साफ पानी पीने की आदत माता पिता को डलवाना बहुत जरूरी होता है।
0: जी हाँ
1: अंजलि जी, अगर बताएं तो कुछ बच्चों में शारीरिक गतिविधि की कमी भी थकान का कारण बनती है। यह सुनने में दोस्तों आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन जो बच्चे पूरे दिन केवल घर के अंदर रहते हैं, मोबाइल या टीवी देखते हैं और खेलकूद से दूर रहते हैं, उनमें भी शरीर की सक्रियता कम हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: नियमित खेलकूद शरीर को मजबूत बनाता है और बच्चों में ऊर्जा का संचार करता है।
0: जी हाँ बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को हम यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय चल रहा है कि बच्चों में बार बार थकान क्यों रहती है और उसके क्या कारण है और समाधान हम क्या कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि कशिश, हम कारणों के बारे में जान रहे हैं जिसमें हमने जाना पौष्टिक भोजन की कमी, आयरन की कमी, पर्याप्त नींद न लेना, पानी की कमी और शारीरिक गतिविधियों की कमी के बारे में। यही अब बात आती है श्रोता साथियों कि आज के समय में मानसिक तनाव भी बच्चों को प्रभावित कर रहा है।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई का दबाव, परीक्षा का डर, बार बार तुलना, डांट फटकार और पारिवारिक तनाव बच्चों के मन पर असर डाल सकते हैं। इसलिए कई बार बच्चे कुछ कह नहीं पाते लेकिन उनका मन और शरीर दोनों थकने लगते हैं। इसलिए माता पिता को केवल बच्चों की शारीरिक ही नहीं उनकी भावनाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और कुछ मामले में कशिश, बार बार थकान किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है, जैसे कि संक्रमण, थायराइड की समस्या और कोई और कारण। यदि बच्चा लंबे समय तक लगातार थका हुआ रहे, वजन कम हो जाए, भूख कम लगे और अन्य लक्षण दिखाई दे तो हमें डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये बातें सामान्य नहीं होती है। सही समय पर किया गया समाधान ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों, अब बात करते हैं साथियों समाधान की। तो सबसे पहले तो बच्चों की दिनचर्या को संतुलित बनाना काफी जरूरी है। समय पर उठना, समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और रोज कुछ समय खेलना, ये कुछ श्रोता साथियों चार आदतें होती हैं जो बच्चों की ऊर्जा बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही अंजलि जी, बच्चों के भोजन में दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही, अंडा, बाजरा, रागी और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ हमें शामिल करने चाहिए। बच्चों को साथियों पैकेट वाले खाद्य पदार्थ के बजाय घर का ताजा भोजन खाने की आदत आप डलवाएं।
0: जी हाँ।
1: बच्चों को रोज खुली हवा में खेलने दे क्योंकि खेल केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ रखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही परिवार के साथ बातचीत करें, उनकी बात ध्यान से सुने और हर समय केवल पढ़ाई का दबाव बच्चों पर न बनाएं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये श्रोता साथियों कि बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चे से आप न करें।
0: बिल्कुल।
1: हर बच्चे का शरीर, स्वभाव और विकास अलग अलग होता है। यदि हम उन्हें समझेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे तो वह धीरे धीरे अंजलि जी स्वस्थ और आत्मविश्वासी बनेंगे।
0: बिल्कुल। यही कशिश, श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि बच्चों में बार बार होने वाली थकान को कभी भी केवल आलस्य या आदत मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार यह शरीर की एक महत्वपूर्ण चेतावनी होती है कि बच्चे को बेहतर पोषण, पर्याप्त आराम, भावनात्मक सहयोग और चिकित्सीय जांच की आवश्यकता है। समय रहते कारण पहचान लेने से छोटी समस्या को बड़ी बनने से रोका जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि एक स्वस्थ बच्चा वही है जो केवल बीमारी से दूर नहीं बल्कि शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से प्रसन्न और भावनात्मक रूप से सुरक्षित भी हो।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों के खान पान, नींद, खेलकूद, पढ़ाई और पारिवारिक वातावरण, इन सभी पर समान ध्यान देना आवश्यक है। जब परिवार बच्चों को समय देता है, उसकी बात सुनता है, उन्हें संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है तब उनका शरीर और मन दोनों मजबूत बनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हम बच्चों की थकान का कारण समझने का प्रयास करें, केवल उसका परिणाम न देखें, क्योंकि स्वस्थ और ऊर्जावान बच्चा ही एक आत्मविश्वासी युवा, जिम्मेदार नागरिक और मजबूत समाज की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि श्रोता साथियों, बच्चे अपनी तकलीफ हमेशा शब्दों में नहीं बता पाते। कई बार उनका बार बार थक जाना, खेलने में रुचि कम होना, पढ़ाई में मन न लगना और हर समय सुस्त दिखाई देना उनके शरीर और मन का एक संकेत होता है।
0: बिल्कुल।
1: कि उन्हें हमारी अधिक समझ, देखभाल और समय की आवश्यकता है। साथियों, ऐसे संकेतों को केवल आलस या नखरा कहकर टाल देना उचित बात नहीं है। यदि हम समय रहते इन बदलावों को पहचान लेंगे तो कई स्वास्थ्य समस्याओं को शुरुआत में ही रोका जा सकता है।
0: जी जी।
1: साथ ही अंजलि जी, हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि बच्चों का स्वास्थ्य केवल दवाइयों या फिर अस्पतालों से नहीं बनता। उनकी रोजमर्रा की जीवन शैली, परिवार का माहौल, भोजन की गुणवत्ता, पर्याप्त आराम, खुलकर खेलने का समय और अपनों का स्नेह, ये सब मिलकर उन्हें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जब बच्चे अपने घर में सुरक्षित, खुश और सम्मानित महसूस करते हैं तब उनके भीतर सीखने, खेलने और आगे बढ़ने की ऊर्जा भी बनी रहती है।
0: जी बिल्कुल कशिश, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बच्चों के भविष्य की तैयारी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके वर्तमान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। हम चाहते हैं कि वे पढ़ाई में आगे रहें, नई नई चीजें सीखें और हर प्रतियोगिता में सफल हो, लेकिन यह सब तभी संभव है श्रोता साथियों जब उनका शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न हो। थका हुआ शरीर और बोझिल मन किसी भी बच्चे की क्षमता को धीरे धीरे कम कर सकता है। इसलिए सफलता की शुरुआत अच्छे स्वास्थ्य से होती है और अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत सही आदतों से होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी रही और हमने जाना कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं वो थकान महसूस करते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं और समाधान के लिए हमारे माता पिता क्या उपाय अपना सकते हैं, ऐसी ढेर सारी बातें हम कर रहे थे। अब जैसा कि बातें ये पूरी हो चुकी है, समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत साथियों को सुनवाएं।
0: जी हाँ,

0: लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागदरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशाना होगा। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
0: साथियों, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय है देशभक्ति, साहस और युवा शक्ति, कारगिल के वीरों से प्रेरणा। जैसा कि श्रोताओं, भारत का इतिहास वीरों के अद्भुत साहस, त्याग और बलिदान से भरा हुआ है।
1: बिल्कुल।

0: जब जब देश पर संकट आया, तब तब भारत माता के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र की रक्षा की है। ऐसे ही गौरवशाली अध्यायों में कारगिल युद्ध का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, ये युद्ध केवल सीमाओं की रक्षा का संघर्ष नहीं था, बल्कि भारतीय सैनिकों की अदम्य वीरता, अटूट देशभक्ति और अजय आत्मविश्वास का प्रतीक था।
1: बिल्कुल
0: अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को परास्त कर ये सिद्ध कर दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीय सेना किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकती है।
1: बिल्कुल
0: कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से कब्जाए गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया और 26 जुलाई 1999 को विजय प्राप्त की, जिसे हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हम इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,
1: तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय जुड़ रहा है। बात कर रहे हैं साथियों देशभक्ति, साहस और युवा शक्ति, कारगिल के वीरों से प्रेरणा को लेकर। जैसा कि जागृति जी, आपने गीत से पहले हमारे युवा साथियों को ये बता दिया था कि जब भी भारत की गौरवशाली इतिहास की बात होती है तब कारगिल युद्ध का नाम सबसे सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, वर्ष 1999 में लड़ा गया यह युद्ध केवल सीमाओं की रक्षा का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग, अनुशासन और देश प्रेम का एक ऐसा उदाहरण है जिसने पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का परिचय कराया था। दोस्तों, कारगिल के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया था कि मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
1: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आज के युवाओं के लिए कारगिल के वीर केवल इतिहास के पात्र नहीं, बल्कि वे साहस, अनुशासन, नेतृत्व, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति के जीवन प्रेरणा स्रोत है।
0: जी हाँ
1: साथियों, जैसा कि सन 1999 में कारगिल की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर दुश्मनों ने घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया था।
0: जी हाँ,
1: इन पहाड़ों की ऊंचाइयां लगभग 16,000 से 18,000 फीट थी कशिश, जहाँ सांस लेना भी कठिन था। भीषण ठंड, ऊंची चट्टाने और लगातार हो रही गोलीबारी के बीच भारतीय सैनिकों ने असंभव प्रतीत होने वाले अभियानों को सफल बनाया, और ये युद्ध हमें बताता है कि यदि मन में देश प्रेम हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज के हमारे युवा साथी आधुनिक तकनीक, शिक्षा और अवसरों से तो भरपूर हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इन सब के साथ ही उन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को भी समझना होगा जागृति जी। दोस्तों, कारगिल के वीर हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं है बल्कि कर्मों में भी दिखाई देती है। आज का यह कार्यक्रम उन वीर जवानों को नमन करता है जागृति जी, और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का एक विनम्र प्रयास कर रहा है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जुलाई 1999 के दौरान हुआ था। श्रोता साथियों, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर इन सभी चोटियों को दुश्मनों से मुक्त कराया था। हम जैसा कि जानते हैं कि लगभग 2 महीने तक चले इस कठिन युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर अद्भुत वीरता दिखाई थी। साथियों, दुश्मन ऊंचाई पर थे, मौसम अत्यंत कठिन था, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे।
1: बिल्कुल,
0: वहीं 26 जुलाई 1999 को ही भारत ने विजय प्राप्त की थी, तभी से हर साल आज ही के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाने लगा।
1: बिल्कुल कशिश, देशभक्ति केवल राष्ट्रगान गाने या तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं होती। सच्ची देशभक्ति तो वो है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है।
0: बिल्कुल,
1: कारगिल के वीरों ने ये करके दिखाया। उन्होंने अपने परिवार, सुख सुविधा और अपने जीवन की चिंता किए बिना मातृभूमि की रक्षा को सर्वोपरि माना।
0: जी हाँ।
1: उनकी देशभक्ति हमें सिखाती है कि प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना होगा, चाहे वो शिक्षक हो, किसान हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, पुलिसकर्मी हो या विद्यार्थी। हर व्यक्ति अपने कार्य के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, हम कहना चाहेंगे कि साहस का अर्थ केवल युद्ध लड़ना नहीं होता, साहस का अर्थ होता है कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेना, भय पर विजय पाना और अपने लक्ष्य से पीछे न हटना।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश की कारगिल के सैनिकों ने शून्य से भी कम तापमान, दुर्गम पहाड़ों, निरंतर खतरे के बीच अद्भुत साहस का परिचय दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि जीत केवल हथियारों से नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और टीम भावना से मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: युवाओं को भी जीवन की कठिनाई जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाएं, बेरोजगारी, असफलता, सामाजिक चुनौतियों से घबराने के बजाय साहस पूर्वक उनका सामना करना चाहिए।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी बहुत ही अच्छी चल रही है।
1: बिल्कुल,
0: और हम कारगिल वीरों के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें बता रहे हैं, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी गीत से पहले देशभक्ति, साहस और युवा शक्ति, कारगिल के वीरों से प्रेरणा को लेकर। यही हम आपको बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है और यही युवा शक्ति देश का वर्तमान भी है कशिश और भविष्य भी है। यदि युवा सही दिशा में अपनी ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, कारगिल के वीर भी कभी युवा ही थे। उन्होंने अपने सपनों से पहले राष्ट्र के सपनों को महत्व दिया। इसीलिए आज के युवाओं को भी अपने जीवन में अनुशासन अपनाना होगा, समय का सम्मान करना होगा, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा, राष्ट्र हित को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखना होगा, नई तकनीक और शिक्षा के माध्यम से देश की प्रगति में योगदान देना होगा।
1: बिल्कुल
0: साथियों, कारगिल के वीर हमें अनेक जीवन मूल्य सिखाते हैं, जैसे कि राष्ट्र सर्वोपरि है, कठिनाइयों से कभी डरना नहीं है, अनुशासन सफलता की कुंजी है और टीम वर्क का महत्व। तो साथियों, अगर ये बातें हम हमारे जीवन में अपनाते हैं तो कभी भी असफलता से हम नहीं डर पाएंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कारगिल युद्ध में अनेक सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था।
0: बिल्कुल,
1: इनमें कैप्टन विक्रम बन्ना, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव शामिल थे। जागृति जी, देखते हैं कि कैप्टन विक्रम बन्ना का प्रसिद्ध वाक्य था कि ये दिल मांगे मोर, जो आज भी युवाओं के भीतर साहस और आत्मविश्वास की नई ऊर्जा भर देता है। उन्होंने विजय प्राप्त करने के बाद भी अगले मिशन के लिए स्वयं को तैयार रखा था।
0: बिल्कुल,
1: और ऐसे में मातृभूमि के लिए अपने प्राण नौछावर उन्होंने कर दिए थे। साथियों, इन सभी वीरों की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने कभी कठिनाइयों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य था केवल राष्ट्र की रक्षा करना।
0: बिल्कुल कशिश, आज का युवा अनेक अवसरों के साथ साथ कई चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, नशे की प्रवृत्ति, बेरोजगारी, मानसिक तनाव और गलत संगति, ये सारी समस्याएं युवाओं की क्षमताओं को प्रभावित कर रही है।
1: बिल्कुल,
0: अगर युवा कारगिल के वीरों के आदर्श को अपनाएंगे तो वे इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: देशभक्ति का अर्थ केवल सीमा पर लड़ना नहीं है श्रोताओं, बल्कि ईमानदारी से पढ़ाई करना है, समाज सेवा करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, कानून का पालन करना है और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कशिश की राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का कार्य नहीं, प्रत्येक नागरिक इसकी जिम्मेदारी भी निभाता है। जैसे कि शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना, नवाचार और स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजित करना, पर्यावरण संरक्षण में भाग लेकर अपने कार्य को पूरा करना, डिजिटल तकनीक का सकारात्मक उपयोग करना, मतदान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक रहना, साथ ही समाज में सद्भाव, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हमारे युवा साथियों को ये भी समझना है कि देशभक्ति केवल सेना तक सीमित नहीं होती। यानी कि जागृति जी, हर युवा सैनिक नहीं बन सकते, लेकिन हर युवा एक जिम्मेदार नागरिक जरूर बन सकते हैं। यदि कोई शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है साथियों, डॉक्टर जो है वो पूरी निष्ठा से इलाज करता है, किसान मेहनत से खेती करता है और वैज्ञानिक नई खोज करता है, खिलाड़ी देश का नाम रोशन करता है या फिर विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करता है, तो ये भी देशभक्ति का ही एक रूप है। ऐसे में देश को मजबूत बनाने में हर नागरिक का अपना योगदान जरूरी है। श्रोता साथियों, कारगिल के वीरों ने अपने अदम्य साहस से ये तो सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार या सेना की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ऐसे में आज का युवा यदि अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, सेवा की भावना को अपनाए जागृति जी, तो वह भी देश को नई ऊंचाइयों तक जरूर पहुँचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और राष्ट्र निर्माण की शुरुआत श्रोता साथियों अपने घर, विद्यालय, कॉलेज और समाज से ही होती है।
0: जी हाँ।
1: यदि युवा अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनेंगे, कानून का पालन करेंगे और समाज के विकास में योगदान देंगे तो भारत का भविष्य अधिक उज्जवल होगा। जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि कारगिल विजय दिवस ये दिन हमें उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम मनाते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत की सीमाओं की रक्षा की थी।
1: बिल्कुल,
0: ये दिन केवल विजय का उत्सव नहीं श्रोताओं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को याद करने का भी अवसर है। ये हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा कई बलिदानों का परिणाम है।
1: बिल्कुल,
0: कारगिल के वीर हमें बताते हैं कि सफलता केवल सुविधा से नहीं बल्कि संघर्ष से मिलती है। अगर हमारे भीतर लक्ष्य के प्रति समर्पण राष्ट्र के प्रति प्रेम और कठिन परिश्रम की भावना हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की कशिश कि युवा अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचाने। वे केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले बने। जब युवा अपने ज्ञान, ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र हित में करेंगे, तभी भारत एक विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे युवा साथियों से ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, अपने हाथों में भारत का वर्तमान भी है और भविष्य भी।
0: बिल्कुल,
1: अपने विचार, आपके निर्णय और आपके कर्म ही आने वाले भारत की तस्वीर तय करेंगे। यदि साथियों आप अपने सपनों को देश के सपनों से जोड़ेंगे तो आपकी सफलता भी देश की सफलता बन जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: अपने भीतर आत्मविश्वास को जगाइए युवा साथियों, मेहनत को अपना साथी बनाइए, अनुशासन को अपना स्वभाव बनाइए और देशभक्ति को अपने जीवन का मूल्य बना लीजिए।
0: बिल्कुल,
1: यही कारगिल के वीरों के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
0: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। हम अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि देश की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे और भारत को ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, नैतिकता तथा मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाने में अपना योगदान जरूर देंगे।
1: बिल्कुल,
0: कारगिल के वीरों का साहस हमारे विचारों में, उनका त्याग हमारे चरित्र में और उनका राष्ट्र प्रेम हमारे जीवन का आदर्श बने। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और भारत माता के प्रति हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बातचीत रहने वाली है कारगिल विजय, साहस और त्याग की प्रेरणा। यानी कि श्रोताओं, कुछ कहानियां केवल इतिहास की किताबों में नहीं लिखी जाती, विदेश की मिट्टी, पर्वतों और हर नागरिक के हृदय में अमर हो जाती है। अंजलि
0: जी, जी
1: कारगिल विजय ऐसी ही एक गाथा है जो हमें बताती है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हर वर्ष यानी कि 26 जुलाई को यानी कि कल ही के दिन हमारा जो भारत देश है वो कारगिल विजय दिवस मनाएगा।
1: बिल्कुल,
0: यह केवल एक विजय का उत्सव नहीं बल्कि उन वीर सैनिकों के अद्भुत साहस, बलिदान और अटूट देशभक्ति को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमाओं की रक्षा की। कारगिल युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया श्रोता साथियों कि भारतीय सैनिक कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अदम्य साहस के साथ विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज कार्यक्रम में हम जानेंगे इस विषय के बारे में कि किस तरीके से कारगिल विश्व युद्ध हुआ था, उस युद्ध ने किस तरीके से साहस की सच्ची परिभाषा दी थी।
1: बिल्कुल, ये बातें हम जरूर करेंगे लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल
1: साथियों, आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाह

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा सुराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कारगिल विजय, साहस और त्याग की प्रेरणा को लेकर। तो जैसा कि अंजलि, आज के सच्चा स्वराज कार्यक्रम में हम केवल युद्ध की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस प्रेरणा को समझेंगे जो कारगिल के वीर हमें अपने जीवन के लिए देकर गए हैं। क्योंकि सच्चा स्वराज केवल सीमाओं की रक्षा नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहने का नाम भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, सन 1999 में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों और सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर अवैध कब्जा कर लिया था।
0: बिल्कुल,
1: उनका उद्देश्य भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करना था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया। लगभग 2 महीने तक यह चला और इस कठिन युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी दुर्गम चोटियों पर असाधारण वीरता का परिचय दिया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय प्राप्त की और तिरंगा पुनः उन सभी चोटियों पर शान से लहराया।
0: बिल्कुल,
1: यह विजय केवल सैन्य सफलता नहीं थी जागृति जी, बल्कि पूरे देश के आत्मविश्वास, एकता और राष्ट्र प्रेम की विजय थी।
0: बिल्कुल अंजलि, साहस का अर्थ केवल हथियार उठाना नहीं होता दोस्तों, साहस का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना, सत्य और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहना, अपने कर्तव्य को हर परिस्थिति में निभाना, भय के बावजूद सही निर्णय लेना।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं अंजलि कि कारगिल के सैनिकों ने हजारों फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर चढ़कर दुश्मन का सामना किया। ऑक्सीजन की कमी थी, कड़ाके की ठंड और लगातार गोलाबारी के बीच भी उनका मनोबल कभी टूटा नहीं था।
1: जी जी।
0: उनका संदेश स्पष्ट था कि देश पहले, बाकी सब बाद में। यही साहस हमें अपने जीवन में भी अपनाना होगा।
1: जी हाँ जागृति जी, कारगिल विजय दिवस हमें त्याग का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है श्रोता साथियों, तब वह केवल अपनी जान का जोखिम नहीं उठाता, बल्कि अपने परिवार, अपने सपनों और अपने सुखों का भी त्याग करता है।
0: बिल्कुल,
1: कई सैनिक अपने छोटे बच्चों को छोड़कर सीमा पर जाते हैं, कई अपने माता पिता से अंतिम बार मिल भी नहीं पाते, लेकिन उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया।
0: जी हाँ।
1: उनका त्याग हमें सिखाता है श्रोता साथियों कि परिवार से ऊपर राष्ट्र का सम्मान है, व्यक्तिगत लाभ से बड़ा समाज का हित है और सुविधा से बड़ा कर्तव्य है।
0: बिल्कुल अंजलि, आज का युवा अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रतियोगिता के लिए चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके दिमाग में तनाव है, असफलता का भ्रम है, ये सब कई बार उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। ऐसे समय में कारगिल के वीर हमें प्रेरणा देते हैं। पहली प्रेरणा, लक्ष्य स्पष्ट रखना होगा। श्रोताओं, भारतीय सेना का केवल एक लक्ष्य था, हर हाल में देश की भूमि को मुक्त कराना।
1: जी जी।
0: जीवन में जब भी लक्ष्य स्पष्ट होता है श्रोताओं, तब कठिनाइयां छोटी लगने लगती है। दूसरी प्रेरणा है अनुशासन, सफलता की कुंजी है। यानी कि श्रोताओं, युद्ध केवल साहस से नहीं जीते जाते, अनुशासन, योजना और टीम वर्क भी उतने ही जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: युवाओं के लिए भी समय का सम्मान, नियमित अध्ययन, मेहनत और अनुशासन सफलता का मार्ग बनाते हैं। इसी के साथ तीसरी प्रेरणा आती है, हार मानना विकल्प नहीं है। कारगिल के पहाड़ कठिन थे, लेकिन सैनिकों ने कभी हार नहीं मानी।
1: जी जी।
0: जीवन की असफलताएं भी हमें रोकने नहीं आती दोस्तों, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से युवा साथी इस दिवस पर कई सारी प्रेरणा ले सकते हैं। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,
2: नफरत

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कारगिल विजय दिवस साहस और त्याग की प्रेरणा को लेकर, जिसमें गीत से पहले हमने जाना था कि युवाओं के लिए किस तरीके से यह दिवस प्रेरणा का एक अच्छा स्रोत है।
1: बिल्कुल।
0: यही बात करें एकता की शक्ति की, तो जागृति जी, कारगिल युद्ध के समय पूरा भारत एकजुट हो गया था। हर धर्म, हर भाषा और हर राज्य के लोग सैनिकों के समर्थन में खड़े थे। किसी ने रक्तदान किया, किसी ने सहायता भेजी, किसी ने सैनिक परिवारों का साथ दिया। यह हमें सिखाता है श्रोता साथियों कि देश तभी मजबूत बनता है जब समाज एकजुट रहता है। सच्चा स्वराज भी तभी संभव है जब हम जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को प्राथमिकता दें।
1: बिल्कुल अंजलि, सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सच्चा स्वराज अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना है, समाज के प्रति जिम्मेदार बनना है, संविधान का सम्मान करना है, देश की संपत्ति की रक्षा करना है, पर्यावरण की सुरक्षा करना है, ईमानदारी और नैतिकता को अपनाना है।
0: बिल्कुल।
1: सीमा पर सैनिक जिस तरह देश की रक्षा करते हैं श्रोताओं, उसी प्रकार नागरिक अपने अच्छे आचरण से देश को मजबूत बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति साहसी अवश्य बन सकता है।
0: जी हाँ।
1: गलत के विरुद्ध आवाज उठाना साहस है श्रोताओं, भ्रष्टाचार का विरोध करना भी साहस है, बेटी को शिक्षा देना भी साहस है, ईमानदारी से काम करना भी साहस है, और कठिन परिस्थितियों में नैतिक बने रहना भी साहस है, और यही साहस समाज को बदलता है।
0: जी हाँ जागृति जी, यदि विद्यार्थी मनोरंजन से कुछ समय निकाल कर पढ़ाई करे तो वह भी त्याग है। यदि किसान कठिन मौसम में भी मेहनत करे तो वो भी त्याग है। यदि शिक्षक पूरी निष्ठा से विद्यार्थियों को शिक्षा दे, यदि डॉक्टर सेवा भावना से उपचार करे, और यदि सफाई कर्मी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करे, तो यह भी राष्ट्र निर्माण का त्याग है।
1: बिल्कुल।
0: हर जिम्मेदार नागरिक अपने अपने क्षेत्र में देश की सेवा कर सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि कारगिल के वीरों से मिलने वाली जीवन की कुछ शिक्षाएं हैं जो हम सभी को अपनानी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि कठिनाई से डरना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है, लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करना है, टीम की भावना को अपनाना है, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाना है। श्रोता साथियों, देश हित ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। कर्तव्य को अधिकार से पहले रखना है, त्याग और सेवा को सम्मान देना है, और इसी के साथ राष्ट्र ध्वज और संविधान का आदर करना है।
1: बिल्कुल अंजलि, आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, आज हमें लड़ना है, अज्ञानता से लड़ना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है, नशे की प्रवृत्ति से लड़ना है, पर्यावरण प्रदूषण से लड़ना है, सामाजिक भेदभाव से लड़ना है, फर्जी खबरों और नफरत से लड़ना है। अगर युवा इन चुनौतियों का सामना ईमानदारी और साहस से करेंगे, तभी भारत सशक्त बनेगा। यही कारगिल के वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रोताओं, राष्ट्र प्रेम केवल नारे लगाने या सोशल मीडिया पर संदेश लिखने तक सीमित नहीं होना चाहिए। सच्चा राष्ट्र प्रेम तब दिखाई देता है अंजलि, जब हम कानून का पालन करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं, ईमानदारी से कर और अपने कर्तव्य निभाते हैं, स्वच्छता बनाए रखते हैं, मतदान करते हैं, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, साथ ही अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं। जब करोड़ों नागरिक अपने छोटे छोटे कर्तव्य निभाते हैं, तभी राष्ट्र महान बनता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कारगिल विजय दिवस हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि उन मूल्यों से सुरक्षित रहता है जिन्हें उसके नागरिक अपने जीवन में अपनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साहस केवल रणभूमि में नहीं, बल्कि हर उस निर्णय में दिखाई देता है जहां हम सत्य, न्याय और कर्तव्य का साथ चुनते हैं। त्याग केवल श्रोता साथियों सैनिक का नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का भी है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करता है। इस कारगिल विजय दिवस पर श्रोता साथियों हम केवल शहीदों को श्रद्धांजलि ही नहीं दें, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन का संकल्प भी बनाएं। हम यह वचन लें कि हम ईमानदार नागरिक बनेंगे, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, समाज में सद्भाव और सहयोग की भावना बढ़ाएंगे, और अपने कार्यों से भारत को और अधिक मजबूत बनाएंगे।
1: बिल्कुल, याद रखिए श्रोताओं, सीमा पर सैनिक तिरंगे की रक्षा करते हैं, और देश के भीतर हम नागरिक अपने चरित्र, अपने कर्म और अपनी जिम्मेदारियों से उस तिरंगे की गरिमा बनाए रखते हैं। साहस को अपना स्वभाव बनाइए, त्याग को अपना संस्कार बनाइए, और राष्ट्र सेवा को अपना जीवन धर्म बनाए। यही कारगिल के वीरों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और यही सच्चे स्वराज की वास्तविक भावना होगी। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आज आवश्यकता केवल शहीदों को याद करने की नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की है।
0: बिल्कुल।
1: अगर विद्यार्थी पूरी लगन से शिक्षा प्राप्त करेगा, किसान पूरी निष्ठा से अन्न उगाए अंजलि, शिक्षक अपने ज्ञान से समाज को दिशा दे, युवा नशे, हिंसा और नकारात्मकता से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाए, और प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे, तो यही कारगिल के अमर वीरों के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।
0: बिल्कुल।
1: तो याद रखिए श्रोता साथियों, हम साहस को अपना स्वभाव बनाएंगे, त्याग को अपना संस्कार बनाएंगे, जैसा कि हमने आपको कहा था पहले, और यही कारगिल के वीरों के बलिदान का सच्चा सम्मान होगा।
0: बिल्कुल।
1: यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और यही सच्चा स्वराज की वास्तविक पहचान होगी। एक ऐसा स्वराज जहां हर नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित और मानवता के प्रति उत्तरदायी हो।
0: जी हाँ, तो जैसा कि जागृति जी कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से कारगिल विजय, साहस और त्याग की प्रेरणा को लेकर, ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

भाई ने बोनो घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में

साथियों, शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका असर कई बार वर्षों तक दिखाई देता है। एक कठोर वाक्य किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है और एक सच्ची हौसला बढ़ाने वाली बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, हाथों से दिया हुआ उपहार कुछ समय तक याद रहता है, लेकिन दिल से बोले गए अच्छे शब्द जीवन भर याद रह जाते हैं। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान। श्रोता साथियों, एक ऐसा कार्यक्रम जो जीवन के उन पहलुओं पर बात करता है जो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। आज का विषय है कार्यक्रम में बातचीत का कि क्या हमारे शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकते हैं। बातें इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन क्यों न शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए आप सभी को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कि क्या हमारे शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर रोज सैकड़ों शब्द बोले जाते हैं, परिवार में, कार्यस्थल पर, खेतों में, बाजार में, स्कूल में, पड़ोस में। हम अक्सर यह सोचते भी नहीं कि हमारी एक बात सामने वाले मन पर क्या असर डालेगी। लेकिन श्रोता साथियों, जरा सोचिए, क्या किसी ने कभी आपकी तारीफ की हो और आपका पूरा दिन अच्छा बीता हो, या किसी ने आपको अपमानित किया हो और वह बात कई दिनों तक आपके मन में रही हो। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब है कि शब्दों में सचमुच बहुत बड़ी ताकत है। आज हम इस ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। जानते हैं सबसे पहले कि शब्द केवल आवाज नहीं, व्यक्तित्व का परिचय है। जी हाँ श्रोता साथियों, हमारी पहचान केवल हमारे कपड़ों, काम या पद से नहीं बनती। हम जिस भाषा में बात करते हैं, जिस सम्मान से लोगों को संबोधित करते हैं और जिस संवेदनशीलता से अपने विचार रखते हैं, वही हमारे व्यक्तित्व का सबसे सच्चा परिचय बनता है। जी हाँ, एक मुस्कान भरा कहा गया नमस्ते, एक सच्चे मन से कहा गया धन्यवाद, या एक विश्वास से कहा गया तुम कर सकते हो। ये छोटे छोटे शब्द श्रोता साथियों किसी के मन में उम्मीद जगा सकते हैं। जी हाँ, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि शब्दों की कीमत पैसों से नहीं होती है, लेकिन उनका प्रभाव कई बार सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। ऐसे शब्द बोलिए श्रोता साथियों जो सुनने वाले के मन में बोझ नहीं बल्कि विश्वास को छोड़ जाए। जी हाँ, कभी सोचा है कि हम कैसे बोलते हैं? देखिएगा श्रोता साथियों, कई बार हम जल्दी में होते हैं, तो कभी हम तनाव में होते हैं, तो कभी हम गुस्से में होते हैं, और इन स्थिति में बिना सोचे कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका असर सामने वाले पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बाद में हम भूल जाते हैं, लेकिन कई लोग उन शब्दों को वर्षों तक नहीं भूल पाते। इसलिए कहा जाता है कि घाव भर जाते हैं लेकिन शब्दों से लगी चोट कई बार देर तक याद रहती है। बच्चे सबसे पहले बोलना घर से ही सीखते हैं। अगर घर में सम्मानजनक भाषा होगी, प्रोत्साहन होगा, धैर्य होगा, तो बच्चे भी वैसी ही भाषा सीखेंगे। लेकिन श्रोता साथियों, यदि हर समय डांट, अपमान और कटु शब्द होंगे तो वे भी वही व्यवहार आगे अपनाएंगे। इसलिए हमारे शब्द केवल आज नहीं, आने वाले कल को भी आकार देते हैं। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि यदि एक किसान पूरे दिन खेत में मेहनत करता है, शाम को कोई उससे कहे कि आपकी मेहनत सचमुच में प्रेरणा देती है, या गृहिणी पूरे दिन परिवार की देखभाल करती है, कोई कह दे कि आपकी वजह से ये घर खुशहाल है। श्रोता साथियों, ये छोटे छोटे वाक्य किसी को नया उत्साह दे सकते हैं। कभी कभी किसी को आगे बढ़ाने के लिए बड़े उपहारों की जरूरत नहीं होती श्रोता साथियों, बल्कि कुछ सच्चे शब्द ही काफी होते हैं। आज कई युवा आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें हमेशा सलाह नहीं चाहिए होती है, कई बार उन्हें केवल इतना सुनना होता है कि हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रोता साथियों, यकीन मानिए, एक भरोसा देने वाला वाक्य कई बार हार मान चुके व्यक्ति को फिर से खड़ा कर सकता है। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि हमारे कहे हुए शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, तो बातचीत आगे निरंतर यूं ही कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि युवा किस तरीके से आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं, और हमारे द्वारा केवल इतना मात्र कह देने से कि हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, हार मान चुके व्यक्ति को फिर से खड़ा कर देता है। यही श्रोता साथियों, हमारे घर में कई बुजुर्ग केवल इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि उनसे कोई सम्मान से बात नहीं करता। एक दिन में 5 मिनट बैठकर उनसे प्यार से बात करना, उनकी राय पूछना, उनको धन्यवाद करना, ये भी अच्छे शब्दों का ही प्रवाह है। कहते हैं ना कि बोलने से पहले सोचिए, क्या मेरे शब्द किसी का मन हल्का करेंगे या भारी। श्रोता साथियों, हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए आपकी एक मीठी सी बात उसके लिए उम्मीदों की किरण बन सकती है। आज हम देखते हैं कि समाज केवल कानूनों से नहीं चलता, समाज आपसी सम्मान, विश्वास और संवाद से चलता है। जब लोग एक दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करते हैं तो विवाद कम होता है, सहयोग बढ़ता है और समुदाय मजबूत बनता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए श्रोता साथियों, कि हर दिन कम से कम 3 लोगों से दिल से एक अच्छी बात कहिए, किसी की मेहनत की सराहना कीजिए, किसी बच्चे का उत्साह बढ़ाइए, किसी बुजुर्गों को धन्यवाद कीजिए। देखिए, केवल उनका ही नहीं बल्कि आपका मन भी बदलने लगेगा। जी हाँ श्रोता साथियों, हमारे शब्द हमारे व्यक्तित्व की सबसे सच्ची पहचान है। हम जो बोलते हैं वही हमारे संस्कार, हमारी सोच और हमारे दिल की गहराइयों को प्रकट करते हैं। इसलिए शब्दों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वे किसी टूटे हुए मन को जोड़ भी सकते हैं और किसी मजबूत मन को तोड़ भी सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि हमें यह कभी नहीं पता चले कि हमारी कही हुई एक अच्छी बात ने किसी इंसान को निराशा से बाहर निकाला, किसी बच्चे में आत्मविश्वास जगाया या किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लुटा दी। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यह प्रभाव वास्तविक होता है। इसलिए बोलने से पहले यह जरूर सोचें कि क्या हमारे शब्द सामने वाले के जीवन में आशा, सम्मान और विश्वास जोड़ रहे हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, शब्दों का चुनाव सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता। हर दिन किसी के जीवन में रोशनी बनने का अवसर हमारे पास होता है, कभी मुस्कान से तो कभी व्यवहार से, और कई बार केवल 2 अच्छे शब्दों से। ऐसा समाज बनाइए जहां हमारे शब्द आलोचना से अधिक प्रोत्साहन दे, अपमान से अधिक सम्मान दे और निराशा से अधिक उम्मीद जगाए। क्योंकि कई बार श्रोता साथियों, हमारी आवाज नहीं हमारे शब्द किसी के पूरे दिन, पूरे जीवन और पूरे आत्मविश्वास को बदलने की ताकत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हम यह नहीं चुन सकते कि लोग हमें क्या कहेंगे, लेकिन हम यह जरूर चुन सकते हैं कि हमारे शब्द दूसरों के लिए कैसे होंगे। हर दिन हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, घर में, खेत में, स्कूल में, दफ्तर में, बाजार में और यहाँ तक कि रास्तों में। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी ऐसे परेशानी से गुजर रहा हो जिसके बारे में हमें कुछ भी पता ना हो। ऐसे समय में हमारे द्वारा बोले गए कुछ संवेदनशील और सम्मानजनक शब्द उसके लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं। इसलिए हर बातचीत को केवल बातचीत मत समझिए, उसे किसी के जीवन को छूने का अवसर समझिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शब्द केवल कोनों तक नहीं पहुंचते, वे सीधे मन तक पहुंचते हैं। कई बार लोग हमारे दिए हुए उपहार भूल जाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा कही गई कोई अच्छी या बुरी बातें उन्हें वर्षों तक याद रहती है। इसलिए बोलते समय केवल यह मत सोचिए कि आपको क्या कहना है, बल्कि यह भी सोचिए कि सामने वाला उसे किस तरह महसूस कर रहा है। और यही संवेदनशीलता श्रोता साथियों, यकीन मानिए, अच्छे समाज की सबसे मजबूत नींव है। आज समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपनी भाषा से दूरी नहीं, अपनापन पैदा करें, जो आलोचना से पहले प्रोत्साहन देना सीखें, जो किसी की कमियां गिनवाने से पहले उसकी मेहनत को पहचानें। जब हमारे शब्द सम्मान, विश्वास, सहयोग से भरते हैं श्रोता साथियों, तब परिवारों में अपनापन बढ़ता है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बुजुर्गों को सम्मान मिलता है और समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है। तो आइए आज से एक नई आदत शुरू करें, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति से ऐसी बात जरूर कहें जिससे उसका हौसला बढ़े, उसका मन हल्का हो या उसके चेहरे पर मुस्कान आए। शायद हमें
कभी पता ही नहीं चले कि हमारी एक छोटी सी बात ने किसी को हार मानने से रोक लिया, किसी को फिर से कोशिश करने की प्रेरणा दे दी या किसी का पूरा दिन बेहतर बना दिया। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों कि बोलना एक कला है, लेकिन ऐसे शब्द चुनना जो किसी के दिल को सुकून दे, ये एक संस्कार है। जी हाँ, दुनिया में सबसे सस्ता उपहार एक अच्छा शब्द है, लेकिन उसका मूल्य सबसे अधिक होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी लोग आपसे मिले तो वे आपकी आवाज नहीं बल्कि आपके शब्द की गर्माहट याद रखें, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं उसके व्यवहार और वाणी से बनती है। और कई बार श्रोता साथियों, यही वाणी किसी के जीवन में उम्मीद का नया सवेरा लेकर आती है। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ये जाना कि किस तरीके से हमारे द्वारा कहे गए शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत और गीत संगीत रहे हैं वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड थकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: बोनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, हितर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे, बेटी है जीवन की रोशनी, उसे जन्म लेने का अधिकार दीजिए।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ, यहाँ आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं समाज से जुड़े उन मुद्दों की जो हमारे जीवन, हमारे परिवार और हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आज का कार्यक्रम का विषय है कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप है। जी हाँ श्रोता साथियों, बेटी केवल एक संतान नहीं होती है बल्कि वह परिवार की मुस्कान, समाज की शक्ति और राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है।
0: जी हाँ।
1: फिर भी विडम्बना यह है कशिश कि आज भी कई स्थानों पर बेटियों को जन्म लेने से पहले ही जीवन से वंचित कर दिया जाता है।
0: जी जी।
1: विज्ञान जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए बना था, उसका दुरुपयोग कर गर्भ में पल रही बेटियों की हत्या कर दी जाती थी। लेकिन अभी के समय में हम देखते हैं कि सरकार द्वारा कानूनी नियम बनाए गए हैं सख्त, उसके वजह से ये सारी चीजें कम हो गई हैं। केवल एक अपराध नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अन्याय है। आज हम समझेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या क्या है, इसके क्या कारण है, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम सभी मिलकर इसे कैसे रोक सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें हम श्रोता साथियों से आज के इस कार्यक्रम में ढेर सारी करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ।
0: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से रूबरू करा दिया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि कन्या भ्रूण हत्या क्या है और किस तरीके से ये हमारे लिए एक अभिशाप है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, जब गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता लगाकर केवल इसलिए गर्भपात करा दिया जाता है क्योंकि वह लड़की है, इसे कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है।
1: जी हाँ,
0: यह एक सामाजिक बुराई होने के साथ साथ कानूनी दंडी अपराध भी है।
1: बिल्कुल,
0: प्रत्येक बच्चे को जन्म लेने का समान अधिकार है। किसी भी बच्चे के साथ केवल उसके लिंग के आधार पर भेदभाव करना मानवता के सिद्धांत के विरुद्ध है।
1: जी हाँ,
0: देखते हैं कि हमारा जो देश है वो सदियों से नारी शक्ति का सम्मान करता आया है। हमारे इतिहास में ऐसी अनेक महिलाओं ने जन्म लिया है कशिश, जिन्होंने अपने साहस, ज्ञान और नेतृत्व से देश का नाम रोशन किया है।
1: बिल्कुल,
0: एक बेटी ही आगे चलकर बहन, मित्र, पत्नी, माँ, शिक्षिका, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सैनिक, किसान, अधिकारी, समाज के मार्गदर्शक बनती है। यदि बेटियां नहीं होंगी तो समाज का संतुलन ही समाप्त हो जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: अगर यही बात करें कि कन्या भ्रूण हत्या के क्या कारण है तो हम देखते हैं कि बहुत सी बार बेटी की चाह में बेटियों को मार दिया जाता है। आज भी कुछ परिवारों में यह सोच बनी हुई है कि केवल बेटा ही परिवार का नाम आगे बढ़ाता है और इसी सोच के कारण बेटियों को बोझ समझा जाने लगा है।
1: बिल्कुल अंजलि जी,
0: पहले हम देखते थे और अभी भी कभी कभी सुनने आता है कि दहेज प्रथा की सोच के कारण भी बहुत से लोग बेटियों को जन्म नहीं देते हैं। श्रोता साथियों, दहेज जैसी कुप्रथा लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि बेटी का जन्म आर्थिक बोझ है, जबकि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध माने गए हैं। कई स्थानों पर आज भी यह मान्यता है कि अंतिम संस्कार केवल बेटा ही कर सकता है। ऐसी पुरानी सोच बेटियों के प्रति भेदभाव को बढ़ावा देती है। और हम देखते हैं कशिश की जहाँ शिक्षा कम होती है वह अंधविश्वास और भेदभाव जो है वो अधिक देखने को मिलता है।
1: जी
0: कई
1: हाँ,
0: परिवारों में महिलाओं को अपने ही बच्चों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं होता है। इस वजह से भी ये समस्याएं बढ़ती हैं। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसका दुरुपयोग भी इसका एक प्रमुख कारण बन गया है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही कई बार हम देखते हैं कि सामाजिक दबाव भी बना रहता है। श्रोता साथियों, कई बार परिवार और रिश्तेदारों के दबाव भी माता पिता को गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: विशेष रूप से यदि बेटियां पहले से हो तो बेटे की चाह और बढ़ जाती है। साथ ही अशिक्षा और अज्ञानता भी एक बहुत बड़ा कारण है।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि शिक्षा की कमी के कारण लोग बेटी और बेटे में अंतर करते हैं। वे ये नहीं समझते कि दोनों समान रूप से परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, देखते हैं कि भ्रूण हत्या जब होती है तो इसके ढेर सारे दुष्परिणाम होते हैं। पहला अनुपात तो यह है, हम देखते हैं पहला दुष्परिणाम तो ये है अंजलि जी कि हम देखते हैं कि जो लिंगानुपात है वो घट जाता है। दोस्तों, लगातार कन्या भ्रूण हत्या के कारण समाज में लड़कियों की संख्या कम हो जाती है।
0: जी जी,
1: इससे स्त्री पुरुष अनुपात बिगड़ता है। साथ ही सामाजिक संतुलन भी असंतुलित हो जाता है। यानी कि जब समाज में महिलाओं की संख्या कम हो जाती है तो विवाह, परिवार और सामाजिक व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लड़कियों की कमी से मानव तस्करी, बाल विवाह और महिला के शोषण जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। बेटी के बिना परिवार अधूरा होता है। श्रोता साथियों, इसकी वजह से समाज की भावनात्मक और सांस्कृतिक संरचना भी प्रभावित होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम जन्म लेने से पहले ही किसी मासूम की हत्या कर देते हैं तो ये पूरी मानवता पर एक गहरा धब्बा होता है।
1: जी हाँ,
0: आज हम हर क्षेत्र में बेटियों को सफलता का नया इतिहास लिखते हुए देख रहे हैं। वे विज्ञान, शिक्षा, खेल, सेना, राजनीति, कृषि, चिकित्सा, न्यायपालिका, अंतरिक्ष, व्यायाम, व्यवसाय सहित कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। यदि कशिश उन्हें अवसर मिले तो वे समाज और देश दोनों का भविष्य बदल सकती हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत में गर्भस्थ शिशु का लिंग बताना और उसके आधार पर गर्भपात कराना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले डॉक्टर, परिवार और उससे संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि यदि कहीं ऐसी गतिविधि की जा रही हो तो उससे संबंधित जानकारी अधिकारियों को सूचित करें। समाज की यह जिम्मेदारी है कि बेटियों को समान अधिकार दे। बेटा और बेटी में भेदभाव न करें, दहेज प्रथा का विरोध करें, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दें, गर्भवती शिशु के लिंग की जांच कराने से इनकार करें, परिवार और समाज में सकारात्मक सोच विकसित करें, सफल महिलाओं की कहानियां सुनाएं, महिलाओं का सम्मान केवल शब्दों से नहीं कशिश व्यवहार में भी दिखना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार उसके नागरिक होते हैं, और जब समाज अपनी ही संतानों के साथ भेदभाव करने लगे तब उसका भविष्य संकट में पड़ जाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, भ्रूण हत्या ऐसी एक अमानवीय और चिंताजनक सामाजिक बुराई है जिसमें अजन्मे शिशु को जन्म लेने से पहले ही जीवन से वंचित कर दिया जाता है।
0: जी हाँ,
1: विशेष रूप से कन्याओं के साथ। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि हमारे समाज की संकीर्ण मानसिकता, लैंगिक असमानता और नैतिक पतन का ये एक प्रतीक है। ये केवल एक परिवार का विषय नहीं है अंजलि जी, बल्कि पूरे राष्ट्र के सामाजिक संतुलन और मानवीय मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती भी है।
0: बिल्कुल कशिश, गांवों में पंचायत, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, विद्यालय, युवा मंडल और सामुदायिक संगठन मिलकर लोगों को इस विषय को लेकर जागरूक कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ग्राम सभाओं में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, स्कूलों में बेटी बचाओ कार्यक्रम किया जाना चाहिए, विवाह समारोह और सामाजिक आयोजन भी बेटी के सम्मान का संदेश देते हैं।
1: जी हाँ,
0: साथ ही बेटी को जन्म पर खुशियां मनाई जाती है।

0: लेकिन हम देखते हैं कि उसके लिए हमें अच्छी शिक्षा, सपने, उसे निर्णय लेने का अवसर, और जब परिवार बदलती है तो समाज भी बदलता है।
1: बिल्कुल,
0: तो इन सारी चीजों को भी हमें बदलने की जरूरत है।
1: हाँ हाँ।
0: याद रखिए कि एक बेटी दो परिवारों को जोड़ती है, एक बेटी समाज में संवेदनशीलता लाती है, एक बेटी भविष्य की माँ बनकर आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि बेटियां सुरक्षित रहेंगी तभी समाज सुरक्षित रहेगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हम बातें कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से कर ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर गीत से पहले भी हमारी आपसे ढेर सारी बातें हुई थी। यही अगर आपको महिलाओं के योगदान को लेकर बात बताएं तो इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के साक्षी हैं अंजलि जी कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा हो, विज्ञान हो, चिकित्सा हो, खेल प्रशासन का क्षेत्र हो, सेना हो, राजनीति, साहित्य, अंतरिक्ष हो, श्रोता साथियों, हर जगह महिलाओं ने देश का गौरव बढ़ाया है।
1: बिल्कुल,
0: यदि उन्हें जन्म लेने का अवसर ही न मिले तो समाज अनेक प्रतिभाओं से वंचित रह जाएगा। हम देखते हैं प्रत्येक बेटी अपने साथ नई संभावनाएं और नए सपने लेकर जन्म लेती है। श्रोता साथियों, ऐसे में भ्रूण हत्या रोकने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं है, आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज की सोच बदली जाए। साथ ही कह सकते हैं कि हमारे द्वारा भी ढेर सारे हमारे जो कर्तव्य हैं उन्हें अपनाया जाए। हम प्रयास कर सकते हैं, लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं, बेटियों की महत्वता लोगों को बता सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में अंजलि जी, परिवार की जिम्मेदारी अहम होती है, क्योंकि परिवार ही वह स्थान होता है जब बच्चों को समानता, सम्मान और संवेदनशीलता के संस्कार मिलते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों, संवेदनाओं और मानवता की परीक्षा है। किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और सबसे मासूम जीवन की कितनी रक्षा करता है। गर्भ में पल रही बेटी भी उतनी ही मूल्यवान है जितना कोई बेटा। उसे जन्म लेने, जीने, सीखने और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, हमें अपने घर, परिवार और समाज में बेटियों का सम्मान करने की चीजों को बढ़ावा देना है, लिंग भेद का विरोध करना है, ऐसी किसी भी कुप्रथा का हिस्सा नहीं बनना है जो हमारी बेटियों को सुरक्षित न रहने दे। जब हर बेटी सुरक्षित होगी, शिक्षित होगी, सम्मान के साथ आगे बढ़ेगी, तभी हमारा समाज सच मायने में विकसित, संवेदनशील और समृद्ध बनेगा। बेटी बचेगी तो परिवार मुस्कुराएगा, परिवार मुस्कुराएगा तो समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो देश सशक्त बनेगा।
0: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज हमारे देश को रोशन करने में कई महिलाओं की भूमिका है, जैसे कि कल्पना चावला, पीवी सिंधु, मेरी कोल, किरण बेदी, सुनीता विलियम्स, जैसे श्रोता साथियों, अनेक महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर महिलाओं को भी अवसर मिले तो बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। बेटियां केवल परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि उसका गर्व होती है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: वह एक बेटी, एक बहन, पत्नी, माँ और कह सकते हैं कि एक अच्छी व्यक्ति के रूप में समाज की निर्माता बनती है।
1: बिल्कुल कशिश, किसी भी समाज की प्रगति केवल, जैसा कि हम हमेशा बताते रहते हैं, कि ऊंची इमारतों, आधुनिक तकनीक और आर्थिक विकास से नहीं आती, बल्कि इस बात से आकी जाती है कि वह हर जीवन का कितना सम्मान किया जाता है। गर्भ में पल रही एक बेटी भी उतनी ही अनमोल है जितना कोई बेटा। उसे जीवन का अवसर देना कानूनी दायित्व नहीं बल्कि हमारी नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी भी है।
0: जी हाँ।
1: आज आवश्यकता इस बात की है श्रोता साथियों कि हम अपनी सोच को बदलें। बेटी को बोझ नहीं बल्कि परिवार की शक्ति, समाज की भागीदारी और देश के भविष्य निर्माता के रूप में देखें।
0: बिल्कुल,
1: जिस घर में बेटियों को सम्मान, शिक्षा और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, वहां खुशहाली, संवेदनशीलता और संस्कार भी विकसित होते हैं। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत कशिश हमारे अपने घर से होनी चाहिए। बच्चों के सामने समानता का व्यवहार रखें। बेटा बेटी भी किसी प्रकार का जो भेदभाव हम बहुत सी बार कर देते हैं वो हमें नहीं करना है।
0: जी हाँ।
1: समाज में फैली गलत धारणाओं का साहस पूर्वक हमें विरोध करना है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि भ्रूण हत्या मानवता के विरुद्ध किया गया एक ऐसा अपराध है जिसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों तक हमें दिखाई देंगे।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, ऐसे में एक सभ्य समाज वही है जो हर बच्चे को जन्म लेने और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दे। समय की मांग है कि पुरानी संकीर्ण सोच को त्याग कर समानता, करुणा और न्याय के मूल्यों को हम अपनाएं।
1: बिल्कुल,
0: प्रत्येक बेटी का जीवन सुरक्षित रहेगा साथियों, तभी समाज संतुलित, समृद्ध और संवेदनशील बन सकेगा। ऐसे में हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा को हम समाप्त करने में अपना सक्रिय योगदान देंगे।
1: जी हाँ।
0: और बेटियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करेंगे।
1: बिल्कुल कशिश, गाँव में पंचायत, आंगनबाड़ी, विद्यालय, स्वयं सहायता समूह, युवा मंडल, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं मिलकर जागरूकता अभियान चलाएं। हर परिवार तक यह संदेश पहुंचे कि बेटी का जन्म उत्सव का अवसर होता है, चिंता का नहीं। यदि किसी को लिंग परीक्षण या कन्या भ्रूण हत्या जैसी गैर कानूनी गतिविधियों की जानकारी मिले जी हाँ। चुप रहने की बजाय जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। हमारी एक छोटी सी जागरूकता किसी मासूम की जिंदगी बचा सकती है। आज हम यह संकल्प लें कि हम अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने निर्णयों से ऐसा समाज बनाएंगे जहां हर बेटी बिना डर, बिना भेदभाव और पूरे सम्मान के साथ जन्म ले सके,
0: जी हाँ,
1: शिक्षा प्राप्त कर सके, अपने सपनों को साकार कर सके। जब हर बेटी सुरक्षित होगी तभी हर परिवार मजबूत होगा। जब हर परिवार मजबूत होगा कशिश, तभी हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जब बेटी सुरक्षित होगी तभी जो परिवार है वो सुरक्षित बन पाएगा और परिवार में होने वाली जो परिवर्तन है वो भी आ पाएंगे। जीवन
0: हाँ।
1: देने का अधिकार कशिश प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। इस उपहार की हमें रक्षा करनी है, हर बेटी का स्वागत करना है और ऐसा समाज बनाना है जहां हर नन्ही गली को खिलने का पूरा अवसर मिले।
0: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों को कशिश बताना चाहेंगे कि जब हम किसी बेटी को जन्म लेने से पहले इस दुनिया में आने का अवसर नहीं देते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो हम केवल एक जीवन नहीं छीनते बल्कि अनगिनत संभावनाओं का अंत कर देते हैं। शायद वही बेटी भविष्य में किसी परिवार का सहारा बनती, किसी विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देती, किसी अस्पताल में मरीजों की सेवा करती, किसी खेत में नई खेती की तकनीक अपनाती, किसी प्रयोगशाला में नया आविष्कार करती या फिर अपने समाज में बदलाव की नई कहानी लिखती। एक जीवन समाप्त होने के साथ अनेक सपने, रिश्ते और भविष्य की संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यह भी समझना होगा कि कन्या भ्रूण हत्या केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे समाज के अस्तित्व और संतुलन का प्रश्न है। जब समाज में बेटियों की संख्या घटती है

0: तो इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए इन समस्या का समाधान केवल कानून से नहीं होगा कशिश, बल्कि हमारी सोच, हमारे संस्कार और हमारे व्यवहार में परिवर्तन से होगा।
1: जी
0: जब
1: हाँ,
0: माता पिता, दादा दादी, शिक्षक, युवा, पंचायत, स्वास्थ्य कर्मी और समाज के जिम्मेदार नागरिक मिलकर बेटियों के सम्मान का वातावरण बनाएंगे, तभी वास्तविक बदलाव दिखाई देगा।
1: बिल्कुल,
0: आज समय की मांग है कि हम अपनी परंपराओं की अच्छी बातों को अपनाएं और उन रूढ़ियों को छोड़ दें जो भेदभाव को बढ़ावा देती हैं।
1: जी हाँ।
0: हम अपने बच्चों को बचपन से यह सिखाएं कशिश कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके लिंग से नहीं बल्कि उसके गुणों, कर्मों और चरित्र से तय होता है। समान अवसर, समान शिक्षा, समान सम्मान ही एक स्वस्थ और विकसित समाज की पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, और हम देखते हैं कि अगर नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर मनुष्य को जन्म लेने का अधिकार प्रकृति और संविधान दोनों प्राप्त करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: देखते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु स्वयं अपना पक्ष नहीं रख सकता, इसलिए उसकी रक्षा करना परिवार और समाज दोनों का दायित्व है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, किसी भी शिशु के जीवन का मूल्य उसके लिंग से नहीं बल्कि उसके मानव होने से निर्धारित होता है। भ्रूण हत्या इसी मूल मानवीय अधिकार का उल्लंघन है और ये करुणा, संवेदना तथा नैतिकता के सिद्धांतों के विपरीत भी है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को सृजन शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में और परंपराओं में भी माँ, बहन और बेटी को विशेष सम्मान दिया गया है।
0: जी हाँ।
1: साथियों, जिस समाज में कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है उसी समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटना होना गहरे सामाजिक विरोधाभास को दर्शाता है। इसलिए हमारी परंपराओं की वास्तविक भावना को हमें अपने व्यवहार में अपनाना होगा।
0: बिल्कुल कशिश, हम यह संकल्प लें कि अपने आसपास ऐसी सकारात्मक सोच विकसित करेंगे जहां बेटी के जन्म पर खुशियां मनाई जाए, उसकी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, उसके सपनों को परिवार का समर्थन मिले और उसके आत्मसम्मान की रक्षा हर परिस्थिति में की जाए। यदि हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तो उसका प्रभाव पूरे गांव और पूरे समाज और पूरे देश तक पहुंचेगा।
1: बिल्कुल,
0: एक बेटी केवल अपने परिवार का भविष्य नहीं बदलती कशिश, बल्कि वह पूरे समाज की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। इसलिए हर बेटी का जन्म मानवता की नई शुरुआत है। हर बेटी की मुस्कान समाज की सबसे बड़ी पूंजी है और हर बेटी की सुरक्षित भविष्य जीने का हम कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव है।
1: जी
0: ऐसा
1: हाँ।
0: भारत बनाने का हमें संकल्प लेना है जहाँ किसी माँ की कोख डर का नहीं, विश्वास का प्रतीक बने, जहाँ हर बेटी को जीवन, सम्मान, सुरक्षा और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। यही सच्ची मानवता है, यही सामाजिक न्याय है और यही एक संवेदनशील, समता मूलक और प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि पहले ये माना जाता था कि केवल पुत्र ही परिवार का सहारा बन सकता है, लेकिन साथियों आज ये धारणा पूरी तरह बदल चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। वे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, माता पिता की देखभाल करने और समाज के विकास में समान रूप से योगदान भी दे रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए बेटी को आर्थिक बोझ मानना वास्तविकता से दूर और पुरानी सोच का परिणाम है, क्योंकि शिक्षा केवल ज्ञान ही नहीं देती दोस्तों, बल्कि सोच बदलने की शक्ति भी प्रदान करती है।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षित परिवारों में लिंग भेदभाव की संभावनाएं बहुत कम होती है। साथ ही विद्यालयों में भी बच्चों को समानता, मानवाधिकार, महिला सम्मान और संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: ताकि हम कह सकते हैं कि बचपन से ही सकारात्मक सोच बच्चों में विकसित हो सके।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि कहा जाता है कि जिस घर में बेटी की हंसी गूंजती है उस घर में खुशियों, प्रेम और अपनापन का वास होता है।
1: बिल्कुल,
0: बेटी केवल परिवार का हिस्सा नहीं होती बल्कि वह संस्कार, संवेदना, विश्वास और नई उम्मीदों की पहचान होती है। वह जीवन की निरंतरता का आधार है। एक बेटी ही आगे चलकर बहन, माँ, शिक्षिका, डॉक्टर, किसान, वैज्ञानिक, सैनिक, कलाकार और कई ऐसे सामाजिक प्रेरणा बनती है।
1: बिल्कुल,
0: समय के साथ समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है, लेकिन आज भी कुछ स्थानों पर बेटियों को बेटों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। यह सोच न केवल गलत है बल्कि समाज के संतुलित विकास में भी बाधा बनती है। इसलिए हम श्रोता साथियों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि बेटी प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है। ईश्वर ने जीवन की रचना में स्त्री और पुरुष दोनों को समान महत्व दिया है। यदि बेटी परिवार का सहारा बन सकती है तो यदि बेटा परिवार का सहारा बन सकता है तो बेटी उस परिवार की शक्ति बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: बेटी अपने स्नेह, धैर्य, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से रिश्तों को जोड़ने का कार्य करती है। वह परिवार में प्रेम सहयोग का वातावरण बनाती है। उसकी उपस्थिति कशिश घर में अपनापन और खुशहाली का अनुभव देती है।
1: जी हाँ।
0: बेटी का जन्म केवल एक नए सदस्य का आगमन नहीं होता है, बल्कि वह पूरे परिवार के लिए नई उम्मीद लेकर आती है। वह अपने माता पिता की भावनाओं को समझती है, भाई बहनों का साथ निभाती है और परिवार के हर सुख दुख में सहभागी बनती है। कई बार बेटियां अपने माता पिता की वृद्धावस्था में सबसे बड़ा सहारा बनती है।
1: जी हाँ।
0: आज अनेक परिवारों में बेटियां अपने माता पिता की सेवा, देखभाल, जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा रही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिम्मेदारी का संबंध लिंग से नहीं बल्कि संस्कार और संवेदनशीलता से होता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, ऐसे में श्रोता साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि भ्रूण हत्या रोकना केवल सरकार या कानून का कार्य नहीं है, ये हमारे प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह बेटियों के प्रति सम्मान का व्यवहार अपनाए। किसी भी प्रकार के श्रोता साथियों, लिंग भेदभाव का विरोध आप करें, अवैध लिंग परीक्षण की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे और अपनी परिवार और समाज में समानता का वातावरण बनाए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि बेटी केवल एक परिवार की संतान नहीं होती बल्कि वह समाज की संस्कृति, संवेदनशीलता और भविष्य की वाहक होती है।
0: जी हाँ।
1: जिस दिन हर घर में बेटी के जन्म पर उतनी ही खुशी मनाई जाएगी जितने बेटे के जन्म पर मनाई जाती है, उसी दिन से भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा का वास्तविक अंत होगा।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, एक विकसित, न्यायपूर्ण और संवेदनशील भारत का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक बेटी को जन्म लेने, शिक्षा पाने, सम्मान के साथ जीने और अपने सपनों को साकार करने का समान अवसर मिले।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल ही रही हैं कि किस तरीके से हमें अपनी बेटियों का सम्मान करना है और बेटियों को भी बेटों के बराबर हक देने की जरूरत है। बातें और भी यूं ही कार्यक्रम में आगे बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से बेटा और बेटी को हमें समान हक देने की जरूरत है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, किसी भी समाज की प्रगति उसकी शिक्षा पर निर्भर करती है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो वह केवल कशिश अपना भविष्य नहीं बदलती, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल बनाती है। शिक्षित बेटी स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, बच्चों की शिक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो अपने अधिकारों को समझती है और दूसरों को भी जागरूक करती है। कशिश आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वे शिक्षा, खेल, विज्ञान, अंतरिक्ष, चिकित्सा, न्यायपालिका, प्रशासन, सेना, कृषि, पत्रकारिता, उद्योग, उद्यमिता जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है।
1: जी हाँ,
0: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं बेटियां जो है वो खेती, पशुपालन, स्व सहायता समूह, हस्तशिल्प और छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। श्रोता साथियों, ये सभी बातें साबित करती हैं कि अवसर मिलने पर बेटियां किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं।
1: जी हाँ,
0: बेटियां परिवार में प्रेम, सम्मान, सहयोग, संवेदनशीलता का वातावरण विकसित कर सकती हैं। वे छोटी उम्र से ही जिम्मेदारियों को समझना सीख जाती हैं।
1: जी हाँ,
0: और परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखती है। यही संस्कार आगे चलकर समाज में भाईचारा, सहयोग और सामाजिक एकता को मजबूत बनाते हैं। कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों को कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियां पढ़ाई के साथ साथ घर के कार्यों में सहयोग करती हैं।
1: बिल्कुल,
0: खेतीबाड़ी में हाथ बढ़ाती हैं, पशुओं की देखभाल करती हैं और परिवार की आजीविका में योगदान देती है।
1: जी हाँ,
0: आज कई ग्रामीण बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने गाँव का नाम रोशन कर रही है। वे शिक्षक, नर्स, पुलिस कर्मी, अधिकारी, उद्यमी बनकर अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बन रही है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, अगर इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझें तो दोस्तों, एक छोटे से गांव में रामलाल और उनकी पत्नी सरिता रहते थे। उनका एक बेटा था, लेकिन वे दूसरे संतान के रूप में बेटी नहीं चाहते थे।
0: बिल्कुल,
1: जब सरिता दूसरी बार गर्भवती हुई थी तो कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें सलाह दी थी, यदि गर्भ में बेटी है तो गर्भपात करा दो। दोस्तों, उनका कहना था कि बेटी की पढ़ाई, शादी और दहेज का बोझ उठाना तुम्हारे लिए कठिन होगा। सरिता इस बात से बहुत दुखी हुई थी। उसने अपने पति से कहा कि क्या एक बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं है? क्या उसका जीवन केवल इसलिए कम मूल्यवान है कि वह लड़की है? श्रोता साथियों, शुरुआत में तो इस बात को सुनकर रामलाल चुप रहे, लेकिन उनकी माँ ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा, बेटा और बेटी दोनों भगवान का वरदान होते हैं। किसी के जीवन का निर्णय हमें करने का अधिकार नहीं है। परिवार ने समाज के दबाव की परवाह किए बिना बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: कुछ महीनों बाद एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया और उसका नाम था आशा। आशा श्रोता साथियों, बचपन से ही पढ़ाई में तेज, अनुशासन और मेहनती लड़की थी। उसने सरकारी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और हर कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया।
0: जी हाँ,
1: गांव के लोग जो कभी उसे उसके जन्म पर ताने उसे देते थे, अब उसकी सफलता की चर्चा करने लगे थे। आशा ने आगे चलकर डॉक्टर बनने का सपना देखा। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उसने साथियों निरंतर मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा लिया।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने बड़े शहर में नौकरी करने के बजाय अपने ही क्षेत्र में अस्पताल खोलने का निर्णय लिया। दोस्तों, उसी अस्पताल में उसने गरीब परिवारों का निःशुल्क उपचार शुरू किया और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि उसने गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, बेटियों के महत्व और भ्रूण हत्या के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना भी शुरू किया।
0: बिल्कुल,
1: वह गांव-गांव जाकर लोगों से ये कहती थी कि जिस बेटी को जन्म लेने नहीं दिया जाता, वही भविष्य में किसी परिवार की डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक या अधिकारी बन सकती है। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में लोगों की सोच बदलने लगी। साथियों, कई परिवारों ने बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव की पंचायत ने भी यह संकल्प लिया कि कोई भी परिवार भ्रूण हत्या जैसे अपराध का समर्थन नहीं करेगा।
0: बिल्कुल,
1: बेटी के जन्म पर पौधारोपण और सामूहिक बधाई देने की नई परंपरा शुरू की गई। एक दिन वही रिश्तेदार जिन्होंने कभी आशा के जन्म का विरोध किया था, उसके अस्पताल आए। उन्होंने भावुक होकर कहा, आज हमें समझ में आ गया बेटी कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि परिवार और समाज का सबसे बड़ा सहारा होती है।
0: जी हाँ।
1: साथियों, आशा उन बातों को सुनकर मुस्कुराई और बोली कि यदि मेरे माता पिता भी समाज के दबाव में आ जाते तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ी न होती। उस दिन पूरे गांव में एक स्वर में कहा गया, अंजलि जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही समाज की सच्ची प्रगति का मार्ग है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि हम ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहां बेटी के जन्म पर खुशियां मनाई जाएं, उसकी उपलब्धियों पर गर्व किया जाए और उसके सपनों को परिवार का पूरा सहयोग मिले। जब हर बेटी को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अधिकारों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा तभी हमारा समाज वास्तव में शिक्षित, न्यायपूर्ण और समृद्ध बनेगा। बेटियां भविष्य की निर्माता हैं, उन्हें अवसर, विश्वास और सम्मान देना केवल उनका अधिकार नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
1: बिल्कुल,
0: बेटी का सशक्त होना पूरे समाज के उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।
1: जी हाँ,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज आवश्यकता केवल बेटियों की सुरक्षा की नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने की भी है। उन्हें ऐसा वातावरण मिले जहाँ वे खुलकर अपने विचार रख सके, अपने निर्णय स्वयं ले सके, अपनी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ सके। परिवार को यह समझना होगा कि बच्चों के सपनों का कोई लिंग नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: यदि बेटियों को समान अवसर मिले जाए तो वे भी अपने ज्ञान, मेहनत और लगन से हर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे सकती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी हैं, हमने जैसा कि कन्या भ्रूण हत्या को लेकर ढेर सारी बातें की।
0: जी हाँ।
1: अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है बेवफा, गीत की बोल है मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे भोपाल के राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी और ईशान जी चीपा। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़ी, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीना जी धाड़ी, सुप्रील जी धाड़ी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे बोरखेड़ा पित्रामल सिंह, विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहिटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुशी मुणत। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं खड़वा से राजेश सेन, सुरेखा जी सेन। इस गीत के अनुरोध करता है यतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, कल्पना ताई, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, सप्रिल लोखंडे, रक्षिता जी लोखंडे। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल ही मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। फिल्म का नाम है बेवफा। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा श्रोता साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है सौतन, गीत के बोल हैं शायद मेरी शादी का ख्याल। इस गीत की फरमाइश, इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने और लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है संतोष भारकी, सुनियाना, सुकन्या और सरिता जी भारकी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे सिंधु बुजुर्ग से, किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नू जी वड़तकर। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुड़ रहे रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। इस गीत के अनुरोध करता है मरहरा से नसीस हबी अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सहेली अब्बासी और अनम जी अब्बासी। सलार पिलगाम कश्मीर से जुड़ना चाह रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और केसरुद्दीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरवी शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। नेहरू चौक पेठन से जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता जादव, आरती पूजा, प्रशांत जादव, सोनम जादव, बेबी सिया जादव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं सोमनाथ जादव, गीता जादव, ओम जादव, सुभाष जादव, चंदन जादव, एकता जी जादव और संगीता जी जादव। कोपरगांव से जुड़ रहे हैं पेंटर मतीन मसूदा और दानिश खान जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ख्याल शायद मेरी शादी का ख्याल। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा श्रोता साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

0: కోసం అవుగా.
1: आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर. अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से. फिल्म का नाम है वंश. गीत के बोल हैं, आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी. इस गीत की फरमाइश करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर. और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहरेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू और बीबी कुटलेश जी. और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान. इस गीत के अनुरोध करता है सहारनपुर से समित मश्रम, साइना हसन, आगसा नाजिया, आफिया इब्राहिम और सदाम जी. और भी साथी जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, आयुषी श्रीवास. बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सोमे सोमो और मानस जी राज. भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा. तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को. गीत के बोल हैं, आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी. तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में.

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है वारिस। गीत के बोल हैं, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है विश्वनाथ शाहू, पंकज शाहू, तिरुपति शाहू और कुंती जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़ी, करुणा मीना, अश्विन विपुल जी कामड़ी। इस गीत के अनुरोध करता है भवानी नगर पेठन से अरुण आरती, भाऊ साहेब गंगा सागर, हर्षवर्धन अशोक, राशि कार्तिक और परी जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ना चाह रही हैं उमा मलिक, आकांक्षा मलिक, माहेजी मलिक। इस गीत के अनुरोध करता है कोकाबलाई से उत्तम सिंह जंगिल, मोरज जंगिल, अनिल कुमार जंगिल, अजीत कुमार जंगिल, आयुष जंगिल, नंदिनी जी जंगिल। सुक्री कला से जोड़ रही हैं अमित जंगिल, सुकुनो जंगिल, आरुषि जंगिल, ओशिका, आदित्य जी और अंजलि जी जंगिल। और भी श्रोता साथी जुड़ रही हैं छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली वर्मा, प्रसाद वर्मा और अमित जी वर्मा। श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रहे हैं डी अशोक कुंभार, अविका जीविका, सोनू कुंभार, अर्चना कुंभार। पुनावले पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनने, करिश्मा सोनने, अविका सोनने, शाहिशाजी सोनने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। फिल्म का नाम है वारिस और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेलेवाला सी। फिल्म का नाम है विजयपद। गीत के बोल ही राहों में उनसे मुलाकात हो गई। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, अजित कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा और सोनम जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं।

गुरुद्वारा से शमशुल कमर राही साइन फातिमा अजनान खान फिजाद खान अनु खान उस्मात अंसारी कलीमजी अंसारी इसी बीच जुर्नाचार्य भागपत से आसिफ अली खान मोमिना नाज मुस्काफ अली खान सादिक अली खान सारिक अली खान जी कलानौर से जुड़ रहे नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन शर्मा मयंक जी शर्मा आकोट से जुर्नाचार्य विनायक भिंडी श्रीमती मंगला जी भिंडी विजय शुभम पवन जरिए और सजीव जी दिल्ली से जुड़नाचार्य तुलसी मस्किन वीना मस्किन आशीष राजा चैतन्य मस्किन मेगा मस्किन चंडीगढ़ से जुड़ रही राहुल खुराना रचिता खुराना केशु खुराना और हिदानजी खुराना बोरीखुर्द से जुड़नाचार्य सुधाकर राजदव प्रशांत राज यादव सचिन वायाल प्रथमेश देशमुख प्रणाली देशमुख हर्षद देशमुख सानवी जी देशमुख हर्षिता देशमुख और प्रणाली जी देशमुख तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को गीत के बोल ही राहों में उनसे मुलाकात हो गई तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरिया छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है प्रेम कहानी। गीत के बोल हैं, फूल आहिस्ता फीको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। इस गीत की फरमाइश करता है उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल बघेल, भारती जी बघेल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे पथिरिया छत्तीसगढ़ से, नरेन नेताम, कुसुम जी नेताम। इस गीत के अनुरोध करता है वासिम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायरा जी सुरोशी। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे मोहन फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन और हिमांश कुमार चंदन। और भी साथी जुड़ना चाह रहे महाराष्ट्र से, रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रतीश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। पटियाकला दुर्ग से जुड़ना चाह रहे संजय साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, सुजेताजी साहू। बुलंदशहर से जुड़ना चाह रहे मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहर परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से जुड़ रहे हैं राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है हरिद्वार से। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन, गीत के बोल हैं आंख है भरी भरी। इस गीत की फरमाइश करता है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा आप जहां जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं नरविल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं नारायण इगले, सोपान तावड़े, आशीष मेहकर जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं कुरावली से साइद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नोरिन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद फेक जी अंसारी। गाजियाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य जी कसाना। मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं प्रवीण हांगोणे, योगिता हांगोणे, प्रणाली जी, पार्थ जी और हांगोणे परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आँख है भरी भरी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर। स्वागत है श्रोता साथियों, आप सभी का फिर से हमारे कार्यक्रम और आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते ही हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप ही अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस करते हैं। तो आज भी जैसा कि ये सिलसिला हमारा आपके साथ बना हुआ था श्रोता साथियों, जिसे आप सुन रहे थे सुबह 11 बजे से आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल के साथ में, और इसे आप सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर के साथ में। तो दोस्तों इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूं और फिर से हम मनोरंजन करेंगे आपके ही द्वारा भेजी गई फरमाइशों के गीतों के साथ में। क्योंकि दोस्तों जो गीत होते हैं ना वो हमारे चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं, चाहे वो दुख भरे हो, चाहे कह सकते हैं कि श्रोता साथियों प्रेमपूर्ण ही गीत क्यों ना हो। गीतों को सुनकर हम एक अलग ही कह सकते हैं कि एहसास महसूस करते हैं। तो जैसा कि ये सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है आपके साथ हमारा, तो फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों अगली फरमाइश का गीत भी एक ऐसा ही बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि फिल्म दबंग का है और गीत के बोल हैं तेरे मस्त मस्त दो नैन। जी हाँ श्रोता साथियों, फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं कोलगांव से जो इस गीत को सुनना चाह रहे हैं। पांडु चंदन, उषा चंदन और रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रतिमेश कुमार प्रणाली और अभिषेक चंदन, संतोष पांडुरंग कुमार जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समरराज आर्यन, आरोही ऐशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा जी। और भी दोस्त इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं हम सभी के साथ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से चंदूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। पंडरपुर तालुका से है दाखिल मुलाणी, सुबियां, सलमा, मुमताज, दिलसार, नसीर मुलाणी, चाचा चाची, मुलाणी परिवार के सभी सदस्यगण। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं तेरे मस्त मस्त दो नैन। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मोहाली पंजाब से। फिल्म का नाम है कसूर, गीत के बोल हैं मोहब्बत हो ना जाए। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी अलका याग्निक जी और कुमार सानू जी ने। सुनना चाह रहे हैं इस गीत को मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। पंडरपुर सिटी से जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के। श्रीरामपुर से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेत दले, जीविका दले, सनिका दले। पूना वाले पुड़े से अजय सोनवाने, करिश्मा सोनवाने, अविका सोनवाने, विशाखा सोनवाने जी। झारखंड से अबास आलम, अफजद अली, लाडली, निशा और सभी परिवार सदस्यगण जुड़ रहे हैं। सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, जे डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जी। पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाड़ो कोल मल्होत्रा, नानक चल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मोहब्बत हो ना जाए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, कसूर फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत था मोहब्बत होना चाहे। इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं दादरी गेट भिवानी से। अगली फरमाइश आई है दोस्तों, फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। इस गीत को आवाज़ दी है ए आर रहमान जी ने और फरमाइश करता दादरी गेट भिवानी से है कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। मुंगी पेठन महाराष्ट्र से हैं बाबा साहेब कगणक्कर, साकरबाई कगणक्कर, परमेश्वरी रोहिणी श्रावणी कगणक्कर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। जद्दर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटे, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। किशोरनगर अमरावती से जुड़ना चाह रहे हैं हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने जी। जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गर्वी जी। मधुबनी बिहार से हैं शबीर परवाना, शाहिद अली दी, जाहिद अली जी और शाहिद अली जी। इसी बीच अगले और भी अनुरोध करता इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, हीरामन शेंडे, प्रेम प्रसिद्धि प्रतिभा गुणाने जी। तो आइए साथियों सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं चल छैया छैया। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है दोस्तों छत्तीसगढ़ मदनपुर से ये फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल। गीत के बोल हैं, कभी तो छलिया लगता है कभी दीवाना लगता है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ मदनपुर से, श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। इसी बीच साथी जुड़ रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। जुड़ रहे हैं मुकेश कश्यप जी, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी जी, लक्ष सोहिनी, मोहिनी तिरिक, बलवीर सिंह जी। नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांडी, तीता कुमारी थांडी, तृप्ता जी, प्रियंका थांडी, प्रशांत थांडी, प्रियम वामिका वाणी थांडी जी। टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप गुलानी, जगमोहन प्रजापति, जग्गी दुआ, किरण ठाकुर जी। नरसिंहगढ़ से हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सोमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, कभी तो छलिया लगता है कभी दीवाना लगता है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत मलयान सरधना मेरठ से आया है। फिल्म का नाम है विवाह, गीत के बोल हैं मुझे हक है। इस गीत को आवाज़ दिए साथियों श्रेया घोषाल जी और उदित नारायण जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मलयान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे नाशिर शेख, नाजन आशीष, साजिद शाहिद, गोविंद पुना। मदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनित राज, सुमित सोमू, मानस राज। इसी बीच जुड़ रहे जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, नियमित आहूजा जी और दिशानी जी। कोरिया से दोनट पांडो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गोरेंजा जालंधर से हैं अशोक जाटव जी। रायगढ़ बिहार से हैं उमा राज, शफी उमा, याकूब उमा, अजमल उमा, कलीम उमा। खंडवा से दुर्गा कुमारी, सपना, राकेश ताई। डुमराव से लालू बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार जी। सहारनपुर से महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र यादव जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मुझे हक है।

तुम सरोवर आए हो, मैंने हर रोज चाह के तुम्हें छत पर बुलाऊं, लेकिन हर बार बस सोच कर रह गया। मुझे क्या पता था कि तुम्हें ये बुलाने का हक था मुझे, और जाना भी तो था।

दोस्तों, जैसा कि विवाह फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत था मुझे हक है, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है मुझसे दोस्ती करोगे, गीत के बोल हैं अनदेखी अनजानी सी। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे डुमराव से, वलीउल्लाह अंसारी, अजमानत अंसारी, शबनम बानो जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, लोनी से हैं नसीम इस्लाम गुनोरी, प्रकाशवीर राजपूत, बालोद से कमलेश शेपुरिया, खंडवा से पिंकी मिंकी शिंकी और रिंकी, रायगढ़ से लालचंद मिश्रा, रमेश चंद्र कुमकुम मिश्रा जी, राजकोट से हेमा जाटव, सुधा जाटव, संध्या कुमारी जी, विरंगाम सिटी से अजिता मेहरा, सुनीता मेहरा, इंदिरा विहार दिल्ली से हैं बेबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी जी, गुजरात से अजित कटारा जी, और भी श्रोता साथी अंबाला से हैं संदीप हागोड़िया, राकेश हागोड़िया जी, और बक्सर से एचडी वली अंसारी जी, अमरावती महाराष्ट्र से हैं श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे, भाविका कीटे और समस्त कीटे परिवार सदस्यगण, कॉपर गांव से हैं एम जी मतीना दारूवाला जी और मसूदा दिया दानिश खान जी, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अजमादा अंसारी, शिल्पी राज जी, दिल्ली से वसीम अंसारी, रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र जानवी यादव, रजा खान, शबाना जावेद खान, बिहार से जुड़ रहे हैं सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा, अनामिका शर्मा जी, शिव मंदिर से राजू बनारसी, राजेश कुमार यादव जी, खंडवा मध्य प्रदेश से सालिया डावर, हलीमा डावर, जिगरा डावर, आयशा खत्री, फातिमा खत्री, तबस्सुम खत्री जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है अनदेखी अनजानी सी।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, गीत के बोल हैं कोई मिल गया। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू पप्पी, नवनीत भाटिया। दुर्गा कॉलोनी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी। दिल्ली बिहार कॉलोनी से जुड़ रहे तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राय, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल रचिता खुराना जी। इसी बीच सुनना चाह रहे हैं मधुसूदन भट्ट, आरती प्रयागराज भट्ट जी। गाजीबाद से शिषपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी। यूपी से हैं सूरज चौरसिया, सरोज चौरसिया, सलोनी सुबोध चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, शिवा शिवानी जी, बाबू पवन गोड़, योगेंद्र नायक जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, धर्मदास वाधवानी जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं और भी श्रोता साथी, हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, रंजन साहू जी। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहितास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह जुड़ रहे हैं मस्तानपुरना जंक्शन से, अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। इसी बीच साथी जुड़ना चाह रहे हैं बाटापरा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वेदई जोशी, हंसिका जोशी, मनीष वर्मा, रेहान खान, अंकित जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं कोई मिल गया। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। साथियों, फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: आज के सुविचार।
1: मन बड़ी ही विचित्र कृति है ये मन। शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी वनों उपवनों की इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। राधे राधे।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
4: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशाना होगा। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
0: साथियों, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय है देशभक्ति, साहस और युवा शक्ति, कारगिल के वीरों से प्रेरणा। जैसा कि श्रोताओं, भारत का इतिहास वीरों के अद्भुत साहस, त्याग और बलिदान से भरा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: जब जब देश पर संकट आया तब तब भारत माता के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र की रक्षा की है। ऐसे ही गौरवशाली अध्यायों में कारगिल युद्ध का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, ये युद्ध केवल सीमाओं की रक्षा का संघर्ष नहीं था, बल्कि भारतीय सैनिकों की अदम्य वीरता, अटूट देशभक्ति और अजय आत्मविश्वास का प्रतीक था।
1: बिल्कुल,
0: अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को परास्त कर ये सिद्ध कर दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीय सेना किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से कब्जाए गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया और

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय जुड़ रहा है। बात कर रहे हैं साथियों देशभक्ति, साहस और युवा शक्ति, कारगिल के वीरों से प्रेरणा को लेकर। जैसा कि जागृति जी, आपने गीत से पहले हमारे युवा साथियों को ये बता दिया था कि जब भी भारत की गौरवशाली इतिहास की बात होती है तब कारगिल युद्ध का नाम सबसे सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, वर्ष 1999 में लड़ा गया यह युद्ध केवल सीमाओं की रक्षा का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग, अनुशासन और देश प्रेम का एक ऐसा उदाहरण है जिसने पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का परिचय कराया था। दोस्तों, कारगिल के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया था कि मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
1: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आज के युवाओं के लिए कारगिल के वीर केवल इतिहास के पात्र नहीं, बल्कि वे साहस, अनुशासन, नेतृत्व, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति के जीवन प्रेरणा स्रोत है।
0: जी हाँ
1: साथियों, जैसा कि सन 1999 में कारगिल की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर दुश्मनों ने घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया था।
0: जी हाँ,
1: इन पहाड़ों की ऊंचाइयां लगभग 16,000 से 18,000 फीट थी कशिश, जहाँ श्वास लेना भी कठिन था। भीषण ठंड, ऊंची चट्टाने और लगातार हो रही गोलीबारी के बीच भारतीय सैनिकों ने असंभव प्रतीत होने वाले अभियानों को सफल बनाया, और ये युद्ध हमें बताता है कि यदि मन में देश प्रेम हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज के हमारे युवा साथी आधुनिक तकनीक, शिक्षा और अवसरों से तो भरपूर हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इन सबके साथ ही उन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को भी समझना होगा जागृति जी। दोस्तों, कारगिल के वीर हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं है बल्कि कर्मों में भी दिखाई देती है। आज का यह कार्यक्रम उन वीर जवानों को नमन करता है जागृति जी, और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का एक विनम्र प्रयास कर रहा है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जुलाई 1999 के दौरान हुआ था। श्रोता साथियों, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर इन सभी चोटियों को दुश्मनों से मुक्त कराया था। हम जैसा कि जानते हैं कि लगभग 2 महीने तक चले इस कठिन युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर अद्भुत वीरता दिखाई थी। साथियों, दुश्मन ऊंचाई पर थे, मौसम अत्यंत कठिन था, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे।
1: बिल्कुल,
0: वही 26 जुलाई 1999 को ही भारत ने विजय प्राप्त की थी, तभी से हर साल आज ही के दिन कारगिल विजय दिवस मनाए जाने लगा।
1: बिल्कुल कशिश, देशभक्ति केवल राष्ट्रगान गाने या तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं होती। सच्ची देशभक्ति तो वो है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है।
0: बिल्कुल,
1: कारगिल के वीरों ने ये करके दिखाया। उन्होंने अपने परिवार, सुख सुविधा और अपने जीवन की चिंता किए बिना मातृभूमि की रक्षा को सर्वोपरि माना।
0: जी हाँ।
1: उनकी देशभक्ति हमें सिखाती है कि प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना होगा, चाहे वो शिक्षक हो, किसान हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, पुलिसकर्मी हो या विद्यार्थी। हर व्यक्ति अपने कार्य के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, हम कहना चाहेंगे कि साहस का अर्थ केवल युद्ध लड़ना नहीं होता, साहस का अर्थ होता है कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेना, भय पर विजय पाना और अपने लक्ष्य से पीछे न हटना।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश की कारगिल के सैनिकों ने शून्य से भी कम तापमान, दुर्गम पहाड़ों, निरंतर खतरे के बीच अद्भुत साहस का परिचय दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि जीत केवल हथियारों से नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और टीम भावना से मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: युवाओं को भी जीवन की कठिनाई जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाएं, बेरोजगारी, असफलता, सामाजिक चुनौतियों से घबराने के बजाय साहस पूर्वक उनका सामना करना चाहिए।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी बहुत ही अच्छी चल रही है।
1: बिल्कुल,
0: और हम कारगिल वीरों के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें बता रहे हैं, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी गीत से पहले देशभक्ति, साहस और युवा शक्ति, कारगिल के वीरों से प्रेरणा को लेकर। यही हम आपको बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है और यही युवा शक्ति देश का वर्तमान भी है कशिश, और भविष्य भी है। यदि युवा सही दिशा में अपनी ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, कारगिल के वीर भी कभी युवा ही थे। उन्होंने अपने सपनों से पहले राष्ट्र के सपनों को महत्व दिया। इसलिए आज के युवाओं को भी अपने जीवन में अनुशासन अपनाना होगा, समय का सम्मान करना होगा, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा, राष्ट्र हित को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखना होगा, नई तकनीक और शिक्षा के माध्यम से देश की प्रगति में योगदान देना होगा।
1: बिल्कुल
0: साथियों, कारगिल के वीर हमें अनेक जीवन मूल्य सिखाते हैं, जैसे कि राष्ट्र सर्वोपरि है, कठिनाइयों से कभी डरना नहीं है, अनुशासन सफलता की कुंजी है और टीम वर्क का महत्व। तो साथियों, अगर ये बातें हम हमारे जीवन में अपनाते हैं तो कभी भी असफलता से हम नहीं डर पाएंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कारगिल युद्ध में अनेक सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था।
0: बिल्कुल,
1: इनमें कैप्टन विक्रम बन्ना, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव शामिल थे। जागृति जी, देखते हैं कि कैप्टन विक्रम बन्ना का प्रसिद्ध वाक्य था कि ये दिल मांगे मोर, जो आज भी युवाओं के भीतर साहस और आत्मविश्वास की नई ऊर्जा भर देता है। उन्होंने विजय प्राप्त करने के बाद भी अगले मिशन के लिए स्वयं को तैयार रखा था।
0: बिल्कुल,
1: और ऐसे में मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर उन्होंने कर दिए थे। साथियों, इन सभी वीरों की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने कभी कठिनाइयों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य था केवल राष्ट्र की रक्षा करना।
0: बिल्कुल कशिश, आज का युवा अनेक अवसरों के साथ साथ कई चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, नशे की प्रवृत्ति, बेरोजगारी, मानसिक तनाव और गलत संगति, ये सारी समस्याएं युवाओं की क्षमताओं को प्रभावित कर रही है।
1: बिल्कुल,
0: अगर युवा कारगिल के वीरों के आदर्श को अपनाएंगे तो वे इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: देशभक्ति का अर्थ केवल सीमा पर लड़ना नहीं है श्रोताओं, बल्कि ईमानदारी से पढ़ाई करना है, समाज सेवा करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, कानून का पालन करना है और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कशिश की राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का कार्य नहीं, प्रत्येक नागरिक इसकी जिम्मेदारी भी निभाता है। जैसे कि शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना, नवाचार और स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजित करना, पर्यावरण संरक्षण में भाग लेकर अपने कार्य को पूरा करना, डिजिटल तकनीक का सकारात्मक उपयोग करना, मतदान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक रहना, साथ ही समाज में सद्भाव, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हमारे युवा साथियों को ये भी समझना है कि देशभक्ति केवल सेना तक सीमित नहीं होती। यानी कि जागृति जी, हर युवा सैनिक नहीं बन सकते, लेकिन हर युवा एक जिम्मेदार नागरिक जरूर बन सकते हैं। यदि कोई शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है साथियों, डॉक्टर जो है वो पूरी निष्ठा से इलाज करता है, किसान मेहनत से खेती करता है और वैज्ञानिक नई खोज करता है, खिलाड़ी देश का नाम रोशन करता है या फिर विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करता है, तो ये भी देशभक्ति का ही एक रूप है। ऐसे में देश को मजबूत बनाने में हर नागरिक का अपना योगदान जरूरी है। श्रोता साथियों, कारगिल के वीरों ने अपने अदम्य साहस से ये तो सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार या सेना की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ऐसे में आज का युवा यदि अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, सेवा की भावना को अपनाए जागृति जी, तो वह भी देश को नई ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और राष्ट्र निर्माण की शुरुआत श्रोता साथियों अपने घर, विद्यालय, कॉलेज और समाज से ही होती है।
0: जी
1: यदि
0: हाँ।
1: युवा अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार बनेंगे, कानून का पालन करेंगे और समाज के विकास में योगदान देंगे तो भारत का भविष्य अधिक उज्जवल होगा। जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि कारगिल विजय दिवस ये दिन हमें उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम मनाते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत की सीमाओं की रक्षा की थी।
1: बिल्कुल,
0: ये दिन केवल विजय का उत्सव नहीं श्रोताओं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को याद करने का भी अवसर है। ये हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा कई बलिदानों का परिणाम है।
1: बिल्कुल,
0: कारगिल के वीर हमें बताते हैं कि सफलता केवल सुविधा से नहीं बल्कि संघर्ष से मिलती है। अगर हमारे भीतर लक्ष्य के प्रति समर्पण राष्ट्र के प्रति प्रेम और कठिन परिश्रम की भावना हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की कशिश की युवा अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचाने। वे केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले बने। जब युवा अपने ज्ञान ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र हित में करेंगे तभी भारत एक विकसित आत्मनिर्भर और विश्व गुरु राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे युवा साथियों से ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों अपने हाथों में भारत का वर्तमान भी है और भविष्य भी।
0: बिल्कुल,
1: अपने विचार आपके निर्णय और आपके कर्म ही आने वाले भारत की तस्वीर तय करेंगे। यदि साथियों आप अपने सपनों को देश के सपनों से जोड़ेंगे तो आपकी सफलता भी देश की सफलता बन जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: अपने भीतर आत्मविश्वास को जगाइए युवा साथियों, मेहनत को अपना साथी बनाइए, अनुशासन को अपना स्वभाव बनाइए और देशभक्ति को अपने जीवन का मूल्य बना लीजिए।
0: बिल्कुल,
1: यही कारगिल के वीरों के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
0: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं हम। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि देश की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे और भारत को ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, नैतिकता तथा मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाने में अपना योगदान जरूर देंगे।
1: बिल्कुल,
0: कारगिल के वीरों का साहस हमारे विचारों में, उनका त्याग हमारे चरित्र में और उनका राष्ट्र प्रेम हमारे जीवन का आदर्श बने। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और भारत माता के प्रति हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार। श्रोता साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन में जब भी हम हाजिर होते हैं तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ता है। और आज हमारे कार्यक्रम में एक ऐसा ही विषय जुड़ने जा रहा है जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कशिश कि जिससे कई परिवार सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अक्सर माता पिता कहते हैं कशिश कि बच्चा पहले की तरह खेलता नहीं है, थोड़ा सा चलने पर थक जाता है, हर समय सुस्त रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और हमेशा लेटे रहने का मन करता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो इसे केवल आलस से समझना सही नहीं बल्कि कई बार यह शारीरिक संकेत भी हो सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि कई बच्चों को अधिक देखभाल और किसी कारण की वजह से जांच की आवश्यकता होती है। बचपन ऊर्जा उत्साह और नई चीजें सीखने का समय होता है। देखते हैं कशिश के इस समय बच्चा जो है वो सामान्य रूप से खेलना दौड़ना सीखना नई गतिविधियों में भाग लेना पसंद करता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि कोई बच्चा लगातार थका हुआ दिखाई दे तो इसके पीछे शारीरिक मानसिक या जीवन शैली से जुड़े कई कारण हो सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसलिए केवल लक्षण नहीं बल्कि उसके पीछे के कारण को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे अभिभावकों और श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों में बार बार थकान क्यों होती है, इसके क्या कारण है और समाधान माता पिता क्या अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी, बचपन जो है वो ऊर्जा, उत्साह और नई चीजें सीखने का समय होता है। इस दौर में सामान्य रूप से बच्चे खेलना, दौड़ना, सीखना, नई नई गतिविधियों में भाग लेना पसंद करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वर्तमान की जीवन शैली के कारण कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जल्दी थक जाते हैं, जिसके कारण माता पिता चिंतित रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बताएं तो इन सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक भोजन की कमी।
1: बिल्कुल,
0: यदि अंजलि जी, बच्चे के भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, आयरन, विटामिन और कुछ जरूरी पोषक तत्व नहीं होते हैं तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती है। कई बच्चे केवल पेट भरने वाला भोजन तो खा लेते हैं लेकिन वह शरीर को ताकत देने वाला संतुलित आहार नहीं लेते।
1: जी जी,
0: बार बार जंक फूड, पैकेट वाले स्नैक्स, मीठे पेय पदार्थ खाने से पेट तो भर जाता है साथियों बच्चों का, लेकिन शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में बच्चों में ढेर सारी समस्याएं देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, यही अब बात आती है आयरन की कमी की। श्रोता साथियों, आयरन की कमी भी बच्चों में थकान का एक प्रमुख कारण है। आयरन की कमी होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, जिससे शरीर के अलग अलग अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे बच्चों का चेहरा फीका दिख जाता है और वे जल्दी थक जाते हैं और पढ़ाई और खेल में पहले जैसा उत्साह नहीं दिखता। इसलिए यदि लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रहे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर जांच करवाना उचित होता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि पर्याप्त नींद न लेना भी बच्चों की थकान का बहुत बड़ा कारण है। आजकल कई बच्चे कशिश देर रात तक मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते हैं और देर से सोते हैं। सुबह जल्दी स्कूल जाने के कारण उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती।
0: बिल्कुल,
1: अधूरी नींद शरीर और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करती है, इससे बच्चा दिन भर सुस्त, चिड़चिड़ा और कम सक्रिय रहता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं हम पानी कम पीने की, क्योंकि हम देखते हैं कि पानी कम पीना भी अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाला एक कारण है।
1: बिल्कुल,
0: शरीर में अंजलि जी पानी की कमी होने पर थकान, सिर दर्द और कमजोरी बच्चों को महसूस हो सकती है। विशेषकर ये समस्या दोस्तों गर्मियों में होती है, क्योंकि गर्मियों में बच्चों को समय समय पर साफ पानी पीने की आदत माता पिता को डलवाना बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ
0: अंजलि जी, अगर बताएं तो कुछ बच्चों में शारीरिक गतिविधि की कमी भी थकान का कारण बनती है। यह सुनने में दोस्तों आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन जो बच्चे पूरे दिन केवल घर के अंदर रहते हैं, मोबाइल या टीवी देखते हैं और खेलकूद से दूर रहते हैं, उनमें भी शरीर की सक्रियता कम हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: नियमित खेलकूद शरीर को मजबूत बनाता है और बच्चों में ऊर्जा का संचार करता है।
1: जी हाँ बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को हम यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय चल रहा है कि बच्चों में बार बार थकान क्यों रहती है और उसके क्या कारण है और समाधान हम क्या कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि कशिश, हम कारणों के बारे में जान रहे हैं जिसमें हमने जाना पौष्टिक भोजन की कमी, आयरन की कमी, पर्याप्त नींद न लेना, पानी की कमी और शारीरिक गतिविधियों की कमी के बारे में। यही अब बात आती है श्रोता साथियों कि आज के समय में मानसिक तनाव भी बच्चों को प्रभावित कर रहा है।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई का दबाव, परीक्षा का डर, बार बार तुलना, डांट फटकार और पारिवारिक तनाव बच्चों के मन पर असर डाल सकते हैं। इसलिए कई बार बच्चे कुछ कह नहीं पाते लेकिन उनका मन और शरीर दोनों थकने लगते हैं। इसलिए माता पिता को केवल बच्चों की शारीरिक ही नहीं उनकी भावनाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और कुछ मामले में कशिश, बार बार थकान किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है, जैसे कि संक्रमण, थायराइड की समस्या और कोई और कारण। यदि बच्चा लंबे समय तक लगातार थका हुआ रहे, वजन कम हो जाए, भूख कम लगे और अन्य लक्षण दिखाई दे तो हमें डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये बातें सामान्य नहीं होती है। सही समय पर किया गया समाधान ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों, अब बात करते हैं साथियों समाधान की। तो सबसे पहले तो बच्चों की दिनचर्या को संतुलित बनाना काफी जरूरी है। समय पर उठना, समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और रोज कुछ समय खेलना, ये कुछ श्रोता साथियों चार आदतें होती हैं जो बच्चों की ऊर्जा बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही अंजलि जी, बच्चों के भोजन में दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही, अंडा, बाजरा, रागी और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ हमें शामिल करने चाहिए। बच्चों को साथियों पैकेट वाले खाद्य पदार्थ की बजाय घर का ताजा भोजन खाने की आदत आप डलवाएं।
0: जी हाँ।
1: बच्चों को रोज खुली हवा में खेलने दे क्योंकि खेल केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ रखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही परिवार के साथ बातचीत करें, उनकी बात ध्यान से सुने और हर समय केवल पढ़ाई का दबाव बच्चों पर न बनाए। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये श्रोता साथियों कि बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चे से आप न करें।
0: बिल्कुल।
1: हर बच्चे का शरीर, स्वभाव और विकास अलग अलग होता है। यदि हम उन्हें समझेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे तो वह धीरे धीरे अंजलि जी स्वस्थ और आत्मविश्वासी बनेंगे।
0: बिल्कुल। यही कशिश, श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि बच्चों में बार बार होने वाली थकान को कभी भी केवल आलस्य या आदत मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार यह शरीर की एक महत्वपूर्ण चेतावनी होती है कि बच्चे को बेहतर पोषण, पर्याप्त आराम, भावनात्मक सहयोग और चिकित्सीय जांच की आवश्यकता है। समय रहते कारण पहचान लेने से छोटी समस्या को बड़ी बनने से रोका जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि एक स्वस्थ बच्चा वही है जो केवल बीमारी से दूर नहीं बल्कि शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से प्रसन्न और भावनात्मक रूप से सुरक्षित भी हो।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों के खान पान, नींद, खेलकूद, पढ़ाई और पारिवारिक वातावरण, इन सभी पर समान ध्यान देना आवश्यक है। जब परिवार बच्चों को समय देता है, उसकी बात सुनता है, उन्हें संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है तब उनका शरीर और मन दोनों मजबूत बनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हम बच्चों की थकान का कारण समझने का प्रयास करें, केवल उसका परिणाम न देखें, क्योंकि स्वस्थ और ऊर्जावान बच्चा ही एक आत्मविश्वासी युवा, जिम्मेदार नागरिक और मजबूत समाज की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि श्रोता साथियों, बच्चे अपनी तकलीफ हमेशा शब्दों में नहीं बता पाते। कई बार उनका बार बार थक जाना, खेलने में रुचि कम होना, पढ़ाई में मन न लगना और हर समय सुस्त दिखाई देना उनके शरीर और मन का एक संकेत होता है।
0: बिल्कुल।
1: कि उन्हें हमारी अधिक समझ, देखभाल और समय की आवश्यकता है। साथियों, ऐसे संकेतों को केवल आलस या नखरा कहकर टाल देना उचित बात नहीं है। यदि हम समय रहते इन बदलावों को पहचान लेंगे तो कई स्वास्थ्य समस्याओं को शुरुआत में ही रोका जा सकता है।
0: जी जी।
1: साथ ही अंजलि जी, हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि बच्चों का स्वास्थ्य केवल दवाइयों या फिर अस्पतालों से नहीं बनता। उनकी रोजमर्रा की जीवन शैली, परिवार का माहौल, भोजन की गुणवत्ता, पर्याप्त आराम, खुलकर खेलने का समय और अपनों का स्नेह, ये सब मिलकर उन्हें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जब बच्चे अपने घर में सुरक्षित, खुश और सम्मानित महसूस करते हैं तब उनके भीतर सीखने, खेलने और आगे बढ़ने की ऊर्जा भी बनी रहती है।
0: जी बिल्कुल कशिश, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बच्चों के भविष्य की तैयारी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके वर्तमान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। हम चाहते हैं कि वे पढ़ाई में आगे रहें, नई नई चीजें सीखें और हर प्रतियोगिता में सफल हो, लेकिन ये सब तभी संभव है श्रोता साथियों जब उनका शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न हो। थका हुआ शरीर और बोझिल मन किसी भी बच्चे की क्षमता को धीरे धीरे कम कर सकता है। इसलिए सफलता की शुरुआत अच्छे स्वास्थ्य से होती है और अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत सही आदतों से होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी रही और हमने जाना कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं वो थकान महसूस करते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं और समाधान के लिए हमारे माता पिता क्या उपाय अपना सकते हैं, ऐसी ढेर सारी बातें हम कर रहे थे। अब जैसा कि बातें ये पूरी हो चुकी है, समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत साथियों को सुनवाएं।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा श्रोता साथियों, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोनो घर की निकलते वक्त कोई आपड़ो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किमकी घेरे कोई आपड़ो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कड़ी है, यदि ये कड़ी कहीं ना कहीं खत्म हो गई तो आदिवासी का जीवन संकट में कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही बात आती है कि इन सारी चीजों का हमारे समुदाय स्तर पर समाधान कैसे देखा जा सकता है।
0: समुदाय के लेवल पर जो अपन समाधान की बात करें तो समुदाय को ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करना चाहिए, जंगल को काटना नहीं चाहिए। जंगल में क्या काटने की जरूरत है? जंगल में जो सूखी टहनी है, यदि जलाऊ लकड़ी काटते हो तो सूखी टहनी है, ये चीज काटनी चाहिए। यदि आप कुवाड़ा लेके पूरे पेड़ पौधे को काट दोगे तो जंगल खत्म हो जाएगा, और जंगल खत्म हो जाएगा तो बारिश, आप जानते हो, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी वही कह रहे हैं कि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ बारिश है, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पानी संग्रह हो सकता है। तो पेड़ पौधे बचा के रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: पेड़ पौधों के साथ साथ जो अपने समुदाय है उसको, ये जो अपन बात करते हैं ना कि भी रासायनिक की बात करते हैं, पेस्टिसाइड की बात करते हैं, इस तरह का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए।
1: जी जी।
0: और इस तरह का प्रयोग करने से अपने जलवायु पर असर होती है, तो इसका भी अपन को ध्यान रखना चाहिए कि जितना कम प्रयोग करेंगे इतनी प्रकृति जो अपना है वो सही रहेगी, और प्रकृति सही रहेगी तो बारिश अच्छी आएगी, और बारिश अच्छी आएगी तो जंगल हरा भरा रहेगा, और जंगल हरा भरा रहेगा तो किसान की खुशहाली बनी रहेगी।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये बताया है कि विरासत क्या है, इसका क्या महत्व है, और किस तरीके से जंगल और नदी का रिश्ता है, और इनका हमारी खेती और संस्कृति पर क्या असर पड़ता है, और समुदाय साथी क्या क्या समाधान के तौर पर चीजों को अपने जीवन में अपना सकते हैं, तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को?
0: मैं श्रोता साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो जंगल बचाने की अपन बात कर रहे हैं, जो समय पर बारिश की आवश्यकता यदि लानी है और फसल को अच्छी तरह से अपन को लेना है, फसल वापस पहले जैसा ही समय लाना है, तो अपन को जरूर हर बारिश के मौसम पे अभी हर समुदाय यदि 5-5 पौधे लगाएंगे तो काफी पौधों की संख्या हो जाएगी, और जहाँ पौधे हैं वहाँ पानी है, पानी को बचा के रखना बहुत जरूरी है। पानी बचेगा तो जीवन सुधरेगा, फसल बचेगी, तो ये चीज करेंगे तो श्रोता साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि अभी हर व्यक्ति पौधे लगाने का प्रयास करें, और पौधे बचाने का प्रयास करें, काटने का नहीं, बचाने का प्रयास करें, तभी जीवन सुखदायी बनेगा।
1: जी बिल्कुल सर, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माइन बुनो सिमके वड़े अपने वेस में पाचा भाई पटेल साहब जुड़े तक हता ने एने आपने घनी असल तरीका ते की घना कनी बातें बताड़ी है। एने आपने बताड़ियो है कि विरासत हूँ कहवाए, आनु हूँ महत्व है, ने हरते जंगल ने नदी नो एका बीजा तकी रिश्तो है, ने एने साथे आज जंगल ने नदी है ई अगर ने होगा तो आनु असर अपने जीवन खेती ने संस्कृति माते हरते पड़े है, ने समुदाय आन में हरते समाधान ने तौर माते घना कनी मोटी भूमिका निभावी सके। तो आशा करो हो कि आ हंगरी बात आपने गमी होगा, क्योंकि अभी टाइम थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वा नो, तो सूटा तो पड़ा, पर जाते पहले हम रिलैक्स और कितने मोरे पड़ा सूटा।

भाइनबोनो अणस के थाते कार्यक्रम खेती बाड़ी तक अमे पड़ा सूट। आशा कर हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में हमारी आप तक जी भी बातें रही है आपने गम्मी होंगा। तो आपने अमारो आज ना कार्यक्रम केव लगे इने बारा में आप अपना राय सुझाव अमने आली सको अमारे अण पता माते। अमारो पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 327001। हजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाई बोनू फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक ना विषय ने हाते तारुती राम राम राम राम।

0: पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
5: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
4: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बोन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
4: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
4: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बातचीत रहने वाली है कारगिल विजय, साहस और त्याग की प्रेरणा। यानी कि श्रोताओं, कुछ कहानियाँ केवल इतिहास की किताबों में नहीं लिखी जाती, विदेश की मिट्टी, पर्वतों और हर नागरिक के हृदय में अमर हो जाती है। अंजलि
0: जी, जी
1: कारगिल विजय ऐसी ही एक गाथा है जो हमें बताती है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हर वर्ष यानी कि 26 जुलाई को यानी कि कल ही के दिन हमारा जो भारत देश है वो कारगिल विजय दिवस मनाएगा।
1: बिल्कुल,
0: यह केवल एक विजय का उत्सव नहीं बल्कि उन वीर सैनिकों के अद्भुत साहस, बलिदान और अटूट देशभक्ति को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमाओं की रक्षा की। कारगिल युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया श्रोता साथियों कि भारतीय सैनिक कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अदम्य साहस के साथ विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज कार्यक्रम में हम जानेंगे इस विषय के बारे में कि किस तरीके से कारगिल विश्व युद्ध हुआ था, उस युद्ध ने किस तरीके से साहस की सच्ची परिभाषा दी थी।
1: बिल्कुल, तो ये बातें हम जरूर करेंगे लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल
1: साथियों, आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगेबान है आँखें।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कारगिल विजय, साहस और त्याग की प्रेरणा को लेकर। तो जैसा कि अंजलि, आज के सच्चा स्वराज कार्यक्रम में हम केवल युद्ध की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस प्रेरणा को समझेंगे जो कारगिल के वीर हमें अपने जीवन के लिए देकर गए हैं। क्योंकि सच्चा स्वराज केवल सीमाओं की रक्षा नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहने का नाम भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, सन 1999 में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों और सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर अवैध कब्जा कर लिया था।
0: बिल्कुल,
1: उनका उद्देश्य भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करना था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया। लगभग 2 महीने तक यह चला और इस कठिन युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी दुर्गम चोटियों पर असाधारण वीरता का परिचय दिया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय प्राप्त की और तिरंगा पुनः उन सभी चोटियों पर शान से लहराया।
0: बिल्कुल,
1: यह विजय केवल सैन्य सफलता नहीं थी जागृति जी, बल्कि पूरे देश के आत्मविश्वास, एकता और राष्ट्र प्रेम की विजय थी।
0: बिल्कुल अंजलि, साहस का अर्थ केवल हथियार उठाना नहीं होता दोस्तों, साहस का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना, सत्य और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहना, अपने कर्तव्य को हर परिस्थिति में निभाना, भय के बावजूद सही निर्णय लेना।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं अंजलि कि कारगिल के सैनिकों ने हजारों फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर चढ़कर दुश्मन का सामना किया। ऑक्सीजन की कमी थी, कड़ाके की ठंड और लगातार गोलाबारी के बीच भी उनका मनोबल कभी टूटा नहीं था।
1: जी जी।
0: उनका संदेश स्पष्ट था कि देश पहले, बाकी सब बाद में। यही साहस हमें अपने जीवन में भी अपनाना होगा।
1: जी हाँ जागृति जी, कारगिल विजय दिवस हमें त्याग का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है श्रोता साथियों, तब वह केवल अपनी जान का जोखिम नहीं उठाता, बल्कि अपने परिवार, अपने सपनों और अपने सुखों का भी त्याग करता है।
0: बिल्कुल,
1: कई सैनिक अपने छोटे बच्चों को छोड़कर सीमा पर जाते हैं, कई अपने माता पिता से अंतिम बार मिल भी नहीं पाते, लेकिन उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया।
0: जी हाँ।
1: उनका त्याग हमें सिखाता है श्रोता साथियों कि परिवार से ऊपर राष्ट्र का सम्मान है, व्यक्तिगत लाभ से बड़ा समाज का हित है और सुविधा से बड़ा कर्तव्य है।
0: बिल्कुल अंजलि, आज का युवा अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रतियोगिता के लिए चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके दिमाग में तनाव है, असफलता का भ्रम है, ये सब कई बार उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। ऐसे समय में कारगिल के वीर हमें प्रेरणा देते हैं। पहली प्रेरणा, लक्ष्य स्पष्ट रखना होगा। श्रोताओं, भारतीय सेना का केवल एक लक्ष्य था, हर हाल में देश की भूमि को मुक्त कराना।
1: जी जी।
0: जीवन में जब भी लक्ष्य स्पष्ट होता है श्रोताओं, तब कठिनाइयां छोटी लगने लगती है। दूसरी प्रेरणा है अनुशासन, सफलता की कुंजी है। यानी कि श्रोताओं, युद्ध केवल साहस से नहीं जीते जाते, अनुशासन, योजना और टीम वर्क भी उतने ही जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: युवाओं के लिए भी समय का सम्मान, नियमित अध्ययन, मेहनत और अनुशासन सफलता का मार्ग बनाते हैं। इसी के साथ तीसरी प्रेरणा आती है, हार मानना विकल्प नहीं है। कारगिल के पहाड़ कठिन थे, लेकिन सैनिकों ने कभी हार नहीं मानी।
1: जी जी।
0: जीवन की असफलताएं भी हमें रोकने नहीं आती दोस्तों, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से युवा साथी इस दिवस पर कई सारी प्रेरणा ले सकते हैं। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,
2: नफरत

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कारगिल विजय दिवस साहस और त्याग की प्रेरणा को लेकर, जिसमें गीत से पहले हमने जाना था कि युवाओं के लिए किस तरीके से यह दिवस प्रेरणा का एक अच्छा स्रोत है।
1: बिल्कुल।
0: यही बात करें एकता की शक्ति की, तो जागृति जी, कारगिल युद्ध के समय पूरा भारत एकजुट हो गया था। हर धर्म, हर भाषा और हर राज्य के लोग सैनिकों के समर्थन में खड़े थे। किसी ने रक्तदान किया, किसी ने सहायता भेजी, किसी ने सैनिक परिवारों का साथ दिया। यह हमें सिखाता है श्रोता साथियों कि देश तभी मजबूत बनता है जब समाज एकजुट रहता है। सच्चा स्वराज भी तभी संभव है जब हम जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दें।
1: बिल्कुल अंजलि, सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सच्चा स्वराज अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना है, समाज के प्रति जिम्मेदार बनना है, संविधान का सम्मान करना है, देश की संपत्ति की रक्षा करना है, पर्यावरण की सुरक्षा करना है, ईमानदारी और नैतिकता को अपनाना है।
0: बिल्कुल।
1: सीमा पर सैनिक जिस तरह देश की रक्षा करते हैं श्रोताओं, उसी प्रकार नागरिक अपने अच्छे आचरण से देश को मजबूत बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति साहसी अवश्य बन सकता है।
0: जी हाँ।
1: गलत के विरुद्ध आवाज उठाना साहस है श्रोताओं, भ्रष्टाचार का विरोध करना भी साहस है, बेटी को शिक्षा देना भी साहस है, ईमानदारी से काम करना भी साहस है, और कठिन परिस्थितियों में नैतिक बने रहना भी साहस है, और यही साहस समाज को बदलता है।
0: जी हाँ जागृति जी, यदि विद्यार्थी मनोरंजन से कुछ समय निकाल कर पढ़ाई करे तो वह भी त्याग है। यदि किसान कठिन मौसम में भी मेहनत करे तो वो भी त्याग है। यदि शिक्षक पूरी निष्ठा से विद्यार्थियों को शिक्षा दे, यदि डॉक्टर सेवा भावना से उपचार करे, और यदि सफाई कर्मी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करे, तो यह भी राष्ट्र निर्माण का त्याग है।
1: बिल्कुल।
0: हर जिम्मेदार नागरिक अपने अपने क्षेत्र में देश की सेवा कर सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि कारगिल के वीरों से मिलने वाली जीवन की कुछ शिक्षाएं हैं जो हम सभी को अपनानी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि कठिनाई से डरना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है, लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करना है, टीम की भावना को अपनाना है, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाना है। श्रोता साथियों, देश हित ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। कर्तव्य को अधिकार से पहले रखना है, त्याग और सेवा को सम्मान देना है, और इसी के साथ राष्ट्र ध्वज और संविधान का आदर करना है।
1: बिल्कुल अंजलि, आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, आज हमें लड़ना है। अज्ञानता से लड़ना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है, नशे की प्रवृत्ति से लड़ना है, पर्यावरण प्रदूषण से लड़ना है, सामाजिक भेदभाव से लड़ना है, फर्जी खबरों और नफरत से लड़ना है। अगर युवा इन चुनौतियों का सामना ईमानदारी और साहस से करेंगे, तभी भारत सशक्त बनेगा। यही कारगिल के वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रोताओं, राष्ट्र प्रेम केवल नारे लगाने या सोशल मीडिया पर संदेश लिखने तक सीमित नहीं होना चाहिए। सच्चा राष्ट्र प्रेम तब दिखाई देता है अंजलि, जब हम कानून का पालन करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं, ईमानदारी से कर और अपने कर्तव्य निभाते हैं, स्वच्छता बनाए रखते हैं, मतदान करते हैं, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, साथ ही अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं। जब करोड़ों नागरिक अपने छोटे छोटे कर्तव्य निभाते हैं, तभी राष्ट्र महान बनता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कारगिल विजय दिवस हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि उन मूल्यों से सुरक्षित रहता है जिन्हें उसके नागरिक अपने जीवन में अपनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साहस केवल रणभूमि में नहीं, बल्कि हर उस निर्णय में दिखाई देता है जहां हम सत्य, न्याय और कर्तव्य का साथ चुनते हैं। त्याग केवल श्रोता साथियों सैनिक का नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का भी है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करता है। इस कारगिल विजय दिवस पर श्रोता साथियों, हम केवल शहीदों को श्रद्धांजलि ही नहीं दें, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन का संकल्प भी बनाएं। हम यह वचन लें कि हम ईमानदार नागरिक बनेंगे, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, समाज में सद्भाव और सहयोग की भावना बढ़ाएंगे, और अपने कार्यों से भारत को और अधिक मजबूत बनाएंगे।
1: बिल्कुल, याद रखिए श्रोताओं, सीमा पर सैनिक तिरंगे की रक्षा करते हैं, और देश के भीतर हम नागरिक अपने चरित्र, अपने कर्म और अपनी जिम्मेदारियों से उस तिरंगे की गरिमा बनाए रखते हैं। साहस को अपना स्वभाव बनाइए, त्याग को अपना संस्कार बनाइए, और राष्ट्र सेवा को अपना जीवन धर्म बनाए। यही कारगिल के वीरों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और यही सच्चे स्वराज की वास्तविक भावना होगी। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आज आवश्यकता केवल शहीदों को याद करने की नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की है। अगर विद्यार्थी पूरी लगन से शिक्षा प्राप्त करेगा, किसान पूरी निष्ठा से अन्न उगाए अंजलि, शिक्षक अपने ज्ञान से समाज को दिशा दे, युवा नशे, हिंसा और नकारात्मकता से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाए, और प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे, तो यही कारगिल के अमर वीरों के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।
0: बिल्कुल।
1: तो याद रखिए श्रोता साथियों, हम साहस को अपना स्वभाव बनाएंगे, त्याग को अपना संस्कार बनाएंगे, जैसा कि हमने आपको कहा था पहले, और यही कारगिल के वीरों के बलिदान का सच्चा सम्मान होगा।
0: बिल्कुल।
1: यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और यही सच्चा स्वराज की वास्तविक पहचान होगी। एक ऐसा स्वराज जहां हर नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित और मानवता के प्रति उत्तरदायी हो।
0: जी हाँ, तो जैसा कि जागृति जी कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से कारगिल विजय, साहस और त्याग की प्रेरणा को लेकर, ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: बोलो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम घूमर हमरवावारी अमर हित्ते बोने ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे बोनो आप सब हमली रिया हो अपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
1: होवे भाई इन बोनो लेने हाजिर थे यहाँ कार्यक्रम।

साथियों, शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका असर कई बार वर्षों तक दिखाई देता है। एक कठोर वाक्य किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है और एक सच्ची हौसला बढ़ाने वाली बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, हाथों से दिया हुआ उपहार कुछ समय तक याद रहता है, लेकिन दिल से बोले गए अच्छे शब्द जीवन भर याद रह जाते हैं। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान। श्रोता साथियों, एक ऐसा कार्यक्रम जो जीवन के उन पहलुओं पर बात करता है जो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। आज का विषय है कार्यक्रम में बातचीत का कि क्या हमारे शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकते हैं। बातें इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन क्यों न शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए आप सभी को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कि क्या हमारे शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर रोज सैकड़ों शब्द बोले जाते हैं, परिवार में, कार्यस्थल पर, खेतों में, बाजार में, स्कूल में, पड़ोस में। हम अक्सर यह सोचते भी नहीं कि हमारी एक बात सामने वाले मन पर क्या असर डालेगी। लेकिन श्रोता साथियों, जरा सोचिए, क्या किसी ने कभी आपकी तारीफ की हो और आपका पूरा दिन अच्छा बीता हो, या किसी ने आपको अपमानित किया हो और वह बात कई दिनों तक आपके मन में रही हो। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब है कि शब्दों में सचमुच बहुत बड़ी ताकत है। आज हम इस ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। जानते हैं सबसे पहले कि शब्द केवल आवाज नहीं, व्यक्तित्व का परिचय है। जी हाँ श्रोता साथियों, हमारी पहचान केवल हमारे कपड़ों, काम या पद से नहीं बनती। हम जिस भाषा में बात करते हैं, जिस सम्मान से लोगों को संबोधित करते हैं और जिस संवेदनशीलता से अपने विचार रखते हैं, वही हमारे व्यक्तित्व का सबसे सच्चा परिचय बनता है। जी हाँ, एक मुस्कान भरा कहा गया नमस्ते, एक सच्चे मन से कहा गया धन्यवाद, या एक विश्वास से कहा गया तुम कर सकते हो, ये छोटे छोटे शब्द श्रोता साथियों किसी के मन में उम्मीद जगा सकते हैं। जी हाँ, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि शब्दों की कीमत पैसों से नहीं होती है, लेकिन उनका प्रभाव कई बार सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। ऐसे शब्द बोलिए श्रोता साथियों जो सुनने वाले के मन में बोझ नहीं बल्कि विश्वास को छोड़ जाए। जी हाँ, कभी सोचा है कि हम कैसे बोलते हैं? देखिएगा श्रोता साथियों, कई बार हम जल्दी में होते हैं, तो कभी हम तनाव में होते हैं, तो कभी हम गुस्से में होते हैं, और इन स्थिति में बिना सोचे कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका असर सामने वाले पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बाद में हम भूल जाते हैं, लेकिन कई लोग उन शब्दों को वर्षों तक नहीं भूल पाते। इसलिए कहा जाता है कि घाव भर जाते हैं लेकिन शब्दों से लगी चोट कई बार देर तक याद रहती है। बच्चे सबसे पहले बोलना घर से ही सीखते हैं। अगर घर में सम्मानजनक भाषा होगी, प्रोत्साहन होगा, धैर्य होगा, तो बच्चे भी वैसी ही भाषा सीखेंगे। लेकिन श्रोता साथियों, यदि हर समय डांट, अपमान और कटु शब्द होंगे तो वे भी वही व्यवहार आगे अपनाएंगे। इसलिए हमारे शब्द केवल आज नहीं, आने वाले कल को भी आकार देते हैं। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि यदि एक किसान पूरे दिन खेत में मेहनत करता है, शाम को कोई उससे कहे कि आपकी मेहनत सचमुच में प्रेरणा देती है, या गृहिणी पूरे दिन परिवार की देखभाल करती है, कोई कह दे कि आपकी वजह से ये घर खुशहाल है। श्रोता साथियों, ये छोटे छोटे वाक्य किसी को नया उत्साह दे सकते हैं। कभी कभी किसी को आगे बढ़ाने के लिए बड़े उपहारों की जरूरत नहीं होती श्रोता साथियों, बल्कि कुछ सच्चे शब्द ही काफी होते हैं। आज कई युवा आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें हमेशा सलाह नहीं चाहिए होती है, कई बार उन्हें केवल इतना सुनना होता है कि हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रोता साथियों, यकीन मानिए, एक भरोसा देने वाला वाक्य कई बार हार मान चुके व्यक्ति को फिर से खड़ा कर सकता है। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि हमारे कहे हुए शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, तो बातचीत आगे निरंतर यूं ही कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि युवा किस तरीके से आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं, और हमारे द्वारा केवल इतना मात्र कह देने से कि हिम्मत मत हारो हम तुम्हारे साथ हैं, हार मान चुके व्यक्ति को फिर से खड़ा कर देता है। यही श्रोता साथियों, हमारे घर में कई बुजुर्ग केवल इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि उनसे कोई सम्मान से बात नहीं करता। एक दिन में 5 मिनट बैठकर उनसे प्यार से बात करना, उनकी राय पूछना, उनको धन्यवाद करना, ये भी अच्छे शब्दों का ही प्रवाह है। कहते हैं ना कि बोलने से पहले सोचिए, क्या मेरे शब्द किसी का मन हल्का करेंगे या भारी। श्रोता साथियों, हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए आपकी एक मीठी सी बात उसके लिए उम्मीदों की किरण बन सकती है। आज हम देखते हैं कि समाज केवल कानूनों से नहीं चलता, समाज आपसी सम्मान, विश्वास और संवाद से चलता है। जब लोग एक दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करते हैं तो विवाद कम होता है, सहयोग बढ़ता है और समुदाय मजबूत बनता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए श्रोता साथियों, कि हर दिन कम से कम 3 लोगों से दिल से एक अच्छी बात कहिए, किसी की मेहनत की सराहना कीजिए, किसी बच्चे का उत्साह बढ़ाइए, किसी बुजुर्गों को धन्यवाद कीजिए। देखिए, केवल उनका ही नहीं बल्कि आपका मन भी बदलने लगेगा। जी हाँ श्रोता साथियों, हमारे शब्द हमारे व्यक्तित्व की सबसे सच्ची पहचान है। हम जो बोलते हैं वही हमारे संस्कार, हमारी सोच और हमारे दिल की गहराइयों को प्रकट करते हैं। इसलिए शब्दों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वे किसी टूटे हुए मन को जोड़ भी सकते हैं और किसी मजबूत मन को तोड़ भी सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि हमें यह कभी नहीं पता चले कि हमारी कही हुई एक अच्छी बात ने किसी इंसान को निराशा से बाहर निकाला, किसी बच्चे में आत्मविश्वास जगाया या किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लुटा दी। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यह प्रभाव वास्तविक होता है। इसलिए बोलने से पहले यह जरूर सोचें कि क्या हमारे शब्द सामने वाले के जीवन में आशा, सम्मान और विश्वास जोड़ रहे हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, शब्दों का चुनाव सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता। हर दिन किसी के जीवन में रोशनी बनने का अवसर हमारे पास होता है, कभी मुस्कान से तो कभी व्यवहार से, और कई बार केवल 2 अच्छे शब्दों से। ऐसा समाज बनाइए जहां हमारे शब्द आलोचना से अधिक प्रोत्साहन दे, अपमान से अधिक सम्मान दे और निराशा से अधिक उम्मीद जगाए। क्योंकि कई बार श्रोता साथियों, हमारी आवाज नहीं हमारे शब्द किसी के पूरे दिन, पूरे जीवन और पूरे आत्मविश्वास को बदलने की ताकत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हम यह नहीं चुन सकते कि लोग हमें क्या कहेंगे, लेकिन हम यह जरूर चुन सकते हैं कि हमारे शब्द दूसरों के लिए कैसे होंगे। हर दिन हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, घर में, खेत में, स्कूल में, दफ्तर में, बाजार में और यहाँ तक कि रास्तों में। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी ऐसे परेशानी से गुजर रहा हो जिसके बारे में हमें कुछ भी पता ना हो। ऐसे समय में हमारे द्वारा बोले गए कुछ संवेदनशील और सम्मानजनक शब्द उसके लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं। इसलिए हर बातचीत को केवल बातचीत मत समझिए, उसे किसी के जीवन को छूने का अवसर समझिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शब्द केवल कोनों तक नहीं पहुंचते, वे सीधे मन तक पहुंचते हैं। कई बार लोग हमारे दिए हुए उपहार भूल जाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा कही गई कोई अच्छी या बुरी बातें उन्हें वर्षों तक याद रहती है। इसलिए बोलते समय केवल यह मत सोचिए कि आपको क्या कहना है, बल्कि यह भी सोचिए कि सामने वाला उसे किस तरह महसूस कर रहा है। और यही संवेदनशीलता श्रोता साथियों, यकीन मानिए, अच्छे समाज की सबसे मजबूत नींव है। आज समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपनी भाषा से दूरी नहीं, अपनापन पैदा करें, जो आलोचना से पहले प्रोत्साहन देना सीखें, जो किसी की कमियां गिनवाने से पहले उसकी मेहनत को पहचानें। जब हमारे शब्द सम्मान, विश्वास, सहयोग से भरते हैं श्रोता साथियों, तब परिवारों में अपनापन बढ़ता है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बुजुर्गों को सम्मान मिलता है और समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है। तो आइए आज से एक नई आदत शुरू करें, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति से ऐसी बात जरूर कहें जिससे उसका हौसला बढ़े, उसका मन हल्का हो या उसके चेहरे पर मुस्कान आए।
शायद हमें कभी पता ही नहीं चले कि हमारी एक छोटी सी बात ने किसी को हार मानने से रोक लिया, किसी को फिर से कोशिश करने की प्रेरणा दे दी या किसी का पूरा दिन बेहतर बना दिया। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों कि बोलना एक कला है, लेकिन ऐसे शब्द चुनना जो किसी के दिल को सुकून दे, ये एक संस्कार है। जी हाँ, दुनिया में सबसे सस्ता उपहार एक अच्छा शब्द है, लेकिन उसका मूल्य सबसे अधिक होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी लोग आपसे मिले तो वे आपकी आवाज नहीं बल्कि आपके शब्द की गर्माहट याद रखें, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं उसके व्यवहार और वाणी से बनती है। और कई बार श्रोता साथियों, यही वाणी किसी के जीवन में उम्मीद का नया सवेरा लेकर आती है। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ये जाना कि किस तरीके से हमारे द्वारा कहे गए शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत और गीत संगीत रहे हैं वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रियो है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रियो है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बुन, हूँ था का? अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये हैं ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा। ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोलो घर की निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। तो भाइयों बनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा करा कि आज की सभा में प्रसारित थावा वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या, इन्हें बल्ले आप हमने राय सुझाव आली शको हमारे अणा पता माते। हमारो पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप हमने फोन करी शको हमारे अणा फोन नंबर माते। हमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाइयों बोनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा। तारुदी आपनी साथी अंजलि नु राम राम।